0: KPR Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: बढ़ते हैं आगे रेडियो मस्ती 24/7 पर. इस समय दुनिया को दहला देने वाली जो खबर है वो है नेपाल टिबेट के फ्लड विक्टिम्स की, और उसी के बारे में कुछ और खबर आपके लिए इस समय कमिंग टू अस फ्रॉम काठमांडू. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. नेपाल प्रिजर्व करेगा डीएनए एंड अदर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम्स हुज बॉडीज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बिफोर देयर रिमेन्स आर हैंडल्ड बाय द स्टेट. ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह ने इसी वीकेंड पर. ये जो अश्योरेंस है, इट केम एज द डेथ टोल फ्रॉम नेपाल टिबेट डिजास्टर हैज बीन रिपोर्टेडली राइजिंग. 3,000 से भी ज्यादा लोग जो इस समय मिसिंग है, इंक्लूडिंग अबाउट 2,500 इन नेपाल, अबाउट 500 इन टिबेट्स गिरोंग काउंटी, एंड among them at least more than 500 foreign nationals. Authorities ne bhi kaha ki jo bodies recover ho rahi hain they have decomposed beyond recognition and they will be buried after legal formalities because of health risks and a fear of disease outbreak. Social media updates mein rescue or relief operations mein ye bhi kaha gaya that the bodies that could not be immediately identified would be handled in accordance with government guidelines for unidentified and unclaimed remains. DNA sample और बाकी की इन्फॉर्मेशन दैट कुड हेल्प एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटीज वुड फर्स्ट बी प्रिजर्व्ड. बॉडीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द फैमिलीज आर बीइंग हैंडेड ओवर टू देम. बहुत ही ज्यादा दुख भरी ये जो चित्र हम देख रहे हैं, जो फोटोज हम देख रहे हैं, वीडियोज हम देख रहे हैं हर तरफ, उसमें से एक जो वाकई बहुत ही दिल दहला देने वाली वीडियो मैंने देखी थी, दैट वाज अबाउट डेड बॉडीज फ्लोटिंग एंड पीपल ऑन द कॉर्नर ऑन द शोर्स पुलिंग सम ऑफ देम बाय देयर हेयर टू गेट द ornaments and the gold out of their bodies and just snatching that from their ears, earrings, everything. Where is humanity? And that's exactly जिसने मुझे शॉक में डाल दिया कि ये भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी इस हद तक गिर सकती है कि कोई इतनी बुरी मौत मरा हो, अचानक से मरा हो, उसके घर वालों को उसका पता भी ना हो, एंड व्हाट सम पीपल कैन थिंक ऑफ इज जस्ट पुलिंग दोज बॉडीज बाय द हेयर व्हाइल दे आर ट्राइंग टू फ्लोट एंड पुल देयर इयररिंग्स एंड देयर बैंगल्स. रियली

बढ़ते हैं थोड़ी सी सीरियस खबरों से टुवर्ड्स समथिंग मोर बॉलीवुडिश। हो जाए इस घंटे की बॉलीवुड की खबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द मॉर्निंग शो विद रेणुका। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती। चलिए आपको बताते हैं नेपोटिज्म की डिबेट। जी हाँ, आती है जाती है जाती है आती है, तो बार बार ये डिबेट क्यों शुरू हो जाती है? वेल, हाल ही में अरशद वारसी, जो कि इस समय प्रमोट कर रहे हैं अपना अगला प्रोजेक्ट जीवन बीमा योजना, उनसे बात करी गई अबाउट दिस नेपोटिज्म का टॉपिक, एंड ही क्रेडिटेड कंप्लीटली कंगना रनौत फॉर ब्रिंगिंग द टॉपिक इनटू द स्पॉटलाइट। ही सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नेपोटिज्म, क्योंकि मुझे ये पता है कि इवेंचुअली आप रहते हैं या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ टैलेंटेड यू आर एंड हाउ फार यू कैन गो। नेपोटिज्म की वजह से आप घुस जरूर सकते हैं लेकिन टिके नहीं रह सकते, बिकॉज दैट्स वॉट द ऑडियंस साइड। ओए होए, बड़ा ही लॉजिकल जवाब। एट द सेम टाइम ही सेड दैट इट्स नॉट इजी बीइंग अ स्टार किड, एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं। आप देखिए, इट्स हैपनिंग विद माय चिल्ड्रन एज वेल। इंप्रेशन जो दूसरे बच्चों दूसरे लोगों पर होता है वो कुछ ऐसा होता है दैट इनके बच्चे हैं तो अच्छे एक्टर्स होंगे ही, लेकिन इट्स नॉट दैट वे। ईच वन हैज देयर ओन पर्सनैलिटी एंड देयरफॉर इट्स नॉट फेयर फॉर स्टार किड्स बिकॉज दे हैव टू लिव अप टू टू मेनी एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने कहा क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है नेपोटिज्म की वजह से। आपके लिए एक दरवाजा जल्दी खुल जाएगा देन समबडी एल्स, लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो वही दरवाजा फटाफट बंद भी हो जाएगा। वेल फॉर श्योर, लॉजिक तो बहुत है इनकी बातों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही दरवाजा खुलना ही तो सबसे बड़ी बात है। पीपल स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स विजिटिंग वन डायरेक्टर, वन प्रोड्यूसर, वन वन वन करते करते सालों साल गुजर जाते हैं, राइट, विदाउट एनी ब्रेक। इस समय जीवन बीमा योजना की बात हुई है तो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक डोगरा, एंड द फिल्म फीचर्स ऑफ कोर्स अरशद वारसी अपार्ट फ्रॉम विजय राज एंड संजीदा शेख। एंड कब आने वाली है? सितंबर 4th को यार, ये रीना, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। गुड मॉर्निंग।

0: वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है सुबह 7 बजे से द मॉर्निंग शो और मैं हूं रेणुका आपके साथ ब्रिंगिंग टू यू न्यूज एंड अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मसी 24/7। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने कल ही के दिन में इंट्रोड्यूस करे मेजर्स टू एड्रेस राइजिंग लिविंग कॉस्ट एंड सपोर्ट बिजनेसेस इंक्लूडिंग रिस्टोरिंग हायर कोटास फॉर सब्सिडाइज पेट्रोल एंड डीजल परचेजेस एज वेल एज मोर फंडिंग फॉर स्कूल्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। On the morning show, this news is coming to you from Kuala Lumpur, जहां पर बात हो रही है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं राइजिंग लिविंग कॉस्ट के लिए सपोर्ट बिजनेसेस के लिए बहुत कुछ इस तरह के मेजर्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट कल ही के दिन से, ऐसा कहा अनवर ने अपने टेलीवाइज्ड एड्रेस में। वेल द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री मस्ट बी रिटर्न टू द पीपल, दैट्स व्हाट ही सेड। अनवर हैज बीन अंडर प्रेशर टू टैकल हायर लिविंग कॉस्ट्स इवन एज मलेशियाज इकोनॉमी हैज आउट परफॉर्म्ड मोस्ट ऑफ इट्स रीजनल पीयर्स। Malaysia ka GDP has grown by 6% in the second quarter of 2026, surpassing official projections. Anwar ne ye kaha ki unki jo sarkar hai, it would restore a quota for Malaysian citizens to buy the popular RON95 transport fuel to 300 liters per month after reducing it to 200 liters a month earlier in 2026 amid a surge in global crude oil prices due to the US-Israeli war on Iran. ये जो कोटा है फॉर डीजल परचेजेस फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ यूजर्स वुड बी सिमिलरली रेज टू 400 लीटर्स पर मंथ। एंड अनवर ने साथ में ये भी कहा कि गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम वुड बी ओपन टू मलेशियंस बिटवीन 18 टू 30 इयर्स, दैट वुड इंक्लूड फ्री एक्सेस टू सेवरल की एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग गूगल्स जेमिनी एंटरप्राइज एंड वंडर क्लिप एंड म्यूल रन बाय चाइनाज अलीबाबा क्लाउड। He also unveiled increased funding for maintaining schools, improving digital health systems and microfinancing facilities for small businesses. उन्होंने कहा उनकी सरकार रेज करेगी द रेवेन्यू थ्रेशोल्ड एग्जेम्प्टिंग कंपनीज फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ई इनवॉइसिंग टू 3 million मलेशियन डॉलर्स। बहुत सारे ऐसे चेंजेस, ऑल्दो द कंट्री इज डूइंग प्रीटी वेल, फिर भी लोगों की जो एक होप होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो विश होती है उसको पूरे करते हुए मलेशिया प्राइम मिनिस्टर। हमारे अगल बगल की बात हो रही है, जी हाँ मलेशिया की बात। फिलहाल बढ़ते हैं आगे ऑन रेडियो मसी 24/7, दिस इज द मॉर्निंग न्यूज विद रेणुका, स्टे ट्यून्ड।
1: आजा प्यार की हो
2: डील, डील बोले तो
3: हाट हाट
4: हमारा यार, सौदा सौदा।
2: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: And as we move away from Singapore, from Nepal, Tibet, China, talking about Malaysia, and now it is time for us to get into North Korea. जी हाँ, वहाँ की खबर कुछ ऐसी है.
1: Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on radio.
0: North Korea ka defense minister unko dismiss kiya gaya hai as a part of the reshuffle of the country's military leadership. Kal ke din mein is baat ka khulasa kiya gaya. The structural reorganization plans were decided during a meeting on Saturday led by Kim Jong-un. And usi ke saath mein, No Kwang Choil was not only dismissed as a defense minister, but also demoted in the ruling party leadership to first vice director of the munitions industry department. Kim Song-hee, the director of the General Political Bureau of the Korean People's Army, was named as the new defense minister. एक और सीनियर ऑफिशियल की बात की जाए, डिफेंस एडवाइजर पार्क जोंग चोन, ही वाज गिवन द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन एंड नेम्ड टू द रूलिंग पार्टीज पॉलिटिकल ब्यूरो. और भी बहुत से प्रमोशंस की अनाउंसमेंट की गई. एक सेपरेट रिपोर्ट में पता लगा है कि किम हैड लॉडेड साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड ऑफिशियल्स एट अ सेरेमनी ऑन सैटरडे फॉर देयर एडवांसेस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, गिविंग देम टॉप नेशनल ऑनर्स. The honorees greatly contributed to resolving scientific and technological problems of epochal significance in developing new combat weapon systems. और साथ ही में किस तरह के टाइप के सिस्टम की बात हो रही है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया. कुछ फोटोज भी रिलीज करी जिसमें दिखाया गया कि किम वॉज पिनिंग अ मेडल ऑन अ रिसिपियंट. जैसे कि हम जानते हैं, नॉर्थ कोरिया इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट एंड वहां के वेपन्स रिसर्च सेंटर हैज रिसेंटली डेवलप्ड एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजीज टू बी रिगार्डेड एज एन इवेंट इन स्ट्रेंथनिंग द केपेबिलिटी फॉर फाइटिंग अ वॉर. विद सच टेक्नोलॉजीज, ऐसा भी दिखाया गया दैट द कोर्स ऑफ यूनिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटीज. वेल, किम ने हाल ही में जून में देखा द न्यू एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्च एंड आर्टिलरी के टेस्ट. तो हम देख रहे हैं कि वॉर की दुनिया में काफी आगे बढ़ते हुए नॉर्थ कोरिया. फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे आगे अगले घंटे की तरफ. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक फॉलोड बाय मोर न्यूज अक्रॉस द आवर. गुड मॉर्निंग.

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh May.
0: तीसरे घंटे में आपका स्वागत. जी हाँ, 9 बजे के इस पार है रेणुका आपके साथ. दिस इज द मॉर्निंग शो गिविंग यू न्यूज एंड अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो.
3: वेल, हमारे इस 7 बजे से शुरू हुआ हमारा शो, उसमें इतना तो टाइम नहीं होता कि आपको सारी दुनिया की सारी खबरें दी जाए. बट यस, वी डू ट्राई टू कीप यू पोस्टेड एज यू गेट अलोंग विद योर डे. आपको याद होगा SQ321, जी हाँ, द सिंगापुर एयरलाइंस की वो फ्लाइट जहाँ पर एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हुई थी, जब बहुत ही हवा में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो चुकी थी. आपको शायद याद होगा मई 2024 की ये बात है. सो लिंडा किचन, जो उनकी पत्नी है जिनकी मौत हुई थी, हिज नेम वॉज जेफ किचन, ही वॉज 73, डाइड ऑन द फ्लाइट. एंड लिंडा किचन 74, वेल शी ब्रोक हर बैक ड्यूरिंग द फ्लाइट. एंड अब उन्होंने हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग शुरू करे हैं, सीकिंग डैमेजेस टू हेल्प हर एक्सेस स्पेशलिस्ट सपोर्ट फॉर हर रिकवरी. हाईकोर्ट के पेपर्स देखते हुए दो बातों की फाइलिंग हुई है. ये जो है, इट हैज बीन ब्रॉट ऑफकोर्स ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड्स एस्टेट. वेल, कोर्ट के रिकॉर्ड्स में ये भी दिखाया जा रहा है कि बहुत से और पैसेंजर्स भी लीगल एक्शन ले रहे हैं सिंगापुर एयरलाइंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग ब्रैडली रिचर्ड्स, जैक जेंकिंस, हाना फुलटन, एंड्रू डाउड, ब्रायन मैथ्यूज एंड पोलिन एंड माइकल रेने. वेल, जब क्वेरीज के बारे में बात करी गई, सिंगापुर एयरलाइंस से पूछा गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फिलहाल, क्योंकि मैटर्स आर बिफोर द कोर्ट्स. मिसेस किचन एंड हर हस्बैंड वर बिगिनिंग अ 6-week हॉलीडे टू सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जब SQ321 एनकाउंटर्ड सिवियर टर्बुलेंस ओवर म्यांमार व्हाइल फ्लाइंग फ्रॉम लंदन टू सिंगापुर. टर्बुलेंस इतना ज्यादा सिवियर थी कि इस तरह से लग रहा था दैट द एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू गो डाउन, एंड हर हस्बैंड फेल ऑन टॉप ऑफ हर ड्यूरिंग द इंसिडेंट, पिनिंग हर अगेंस्ट अ सीट आर्मरेस्ट बिफोर अदर पैसेंजर्स हेल्प मूव हिम एंड द डॉक्टर्स परफॉर्म्ड द CPR. शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इन बैंकॉक, जहां पर 10 दिन तक वो रही, एंड देन शी वॉज फ्लोन बैक टू ब्रिस्टल. शी वॉज ऑल्सो हॉस्पिटलाइज फॉर अनदर वीक इन ब्रिटेन एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट असिस्टेंस आफ्टर शी वॉज डिस्चार्ज. मिसेस किचन को 2 दिन बाद ही पता लगा कि उनके पति की मौत हो चुकी है, एंड नथिंग प्रिपेयर्ड हर फॉर दैट. वेल, उसके बाद से इस समय अब अपनी परेशानियों से परेशान होकर उन्होंने फाइनली एक कोर्ट केस किया है, और अब पता लगेगा कि सिंगापुर एयरलाइंस पर किस तरह का दबाव होगा या क्या इसका रिजल्ट आएगा. ऑन दैट नोट, वील टेक अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक हियर, कम बैक विद सम मोर न्यूज इन जस्ट अ लिटल बिट. गुड मॉर्निंग.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: All right, coming to the Bollywood update of this hour. This is Renuka with you. और इस समय कितना समय हो रहा है? 9:25 होने वाले हैं. Radio Masti 24/7 पर. जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है The Morning Show. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. उठ तो चुके होंगे अब तक, वेक अप कॉल की जरूरत नहीं. लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन ने जो शेयर करा है मैरिज एडवाइस हस्बैंड्स के लिए, उससे वेक अप आपका जरूर हो जाएगा एक बार और. KBC, जी हाँ, द पॉपुलर प्रोग्राम दैट अमिताभ बच्चन होस्ट्स ऑन टेलीविजन, शायद टेलीविजन इसी वजह से फिलहाल चल रहा है. ही वाज स्पीकिंग टू अ कंटेस्टेंट और उन्होंने कहा कि भैया अपनी शादी की डेट याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. एंड ही एड्रेस्ड ऑल द हस्बैंड्स अमंगस्ट द कंटेस्टेंट्स एंड द व्यूअर्स, कहा जितने भी यहाँ पति लोग हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए. जिस दिन आपका ब्याह हुआ था अपनी पत्नी के साथ, सारी दुनिया को भूल जाइए, उस डेट को कभी मत भूलिएगा. He then joked about what could happen if a husband forgets the date. He said, if wives repeatedly ask, तुमको मालूम है हमारा ब्याह कब हुआ था? And he warned that getting the answer wrong could lead to जूता, चप्पल, बेलन सब चल पड़ेगा. Of course, everybody laughs when Amitabh Bachchan ji cracks a joke. That happens anyway. And he's been married to Jaya Bachchan, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत से साल हो गए उनकी शादी को. And he's spoken about the relationship and life at home on the show before. And he continues to do that because obviously he's really connecting beautifully through that show. उन्होंने अपनी ऐसे बात करते हैं जैसे कि he just bears it all, you know, how he is at home. He even revealed that he makes it a point to inform his family whenever a shoot could make him late for dinner. और साथ ही में कहा कि नहीं तो फिर क्वेश्चनिंग हो जाएगी बाद में, इसीलिए पहले से ही बता दो. एंड ही ऑफ कोर्स स्पोक अबाउट मैनेजिंग हाउसहोल्ड रिस्पांसिबिलिटीज एंड सेड कि जब हमारे घर में कोई भी हेल्पर नहीं होता था, ही टेक्स केयर ऑफ द चोर्स हिमसेल्फ. अब छोड़ भी दो अमिताभ बच्चन जी, किस तरह की बातें कर रहे हो आप. Well, he said that cooking is not his strength really, but कभी कभी जब Jaya does ask him to make something, तो फिर वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन he definitely asks Jaya to make something for him और वो बना देती हैं. Well, that is beautifully shared. And of course, he was joking about wedding anniversaries, अपनी कहानियाँ और बहुत कुछ. तो आप जाके देख सकते हैं KBC, after all, TRP बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है. Radio Masti 24/7 पर हम करेंगे चुगलियाँ. That's the name of our next gun. मेरा यार यार मुझ में, मेरा प्यार प्यार तुझे. I'll see you in just a little bit. Stay tuned, enjoy the music.

वेलकम बैक। आइए बात करते हैं, इस समय जो वॉशिंगटन से खबर आ रही है, 6 महीने हो चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट को, एंड शुरुआत में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में और मिडल ईस्ट का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में बात हो रही थी कि 4 से 5 हफ्ते इज ऑल इट विल लास्ट। बट नाउ रिपब्लिक स्ट्रेटेजिस्ट दे आर वरिड कि ईरान वॉर को बाहर रखने का कोई भी तरीका नहीं है फ्रॉम हर्टिंग द पार्टीज प्रोस्पेक्ट्स इन नवंबर्स मिड टर्म इलेक्शंस। Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on Radio Masti. इस समय जो hostilities हैं, they are continuing and they have demoralized GOP voters, जिन्होंने भेजा था Trump को to the White House in order to tame inflation and keep the US out of overseas conflicts. Compounding the Republican fears is the president's apparent lack of concern, even as the unpopular conflict drags down his approval ratings and polls, showing rising voter frustration with the war and the high gas prices and stubborn inflation it's fueled. कुछ फोरकास्टर्स का ये भी कहना है कि रिपब्लिकन्स रिस्क लूजिंग कंट्रोल ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ कांग्रेस इफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिवर्स दैट सेंटिमेंट बिफोर इलेक्शन डे। इसके साथ ही थ्रेट हो सकता है ट्रंप के एजेंडा को फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टर्म एंड सब्जेक्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू अ राफ्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बाय राइवल डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स। From the outset, Americans जो skeptical रहे हैं about the war, although the issue split largely along party lines after the massive early bombing campaign did not produce an Iranian surrender and the disruption to energy markets spiked gas prices and stoked inflation, public sentiment shift होना शुरू हो चुका। और रीसेंट मंथ्स में जो सर्वेज हुए हैं उससे पता लगता है कि यूएस वोटर्स स्टेडली दे आर सावर ऑन द प्रेसिडेंट, द वॉर, द इंक्रीजिंगली रिपब्लिकन कैंडिडेट्स। मेनी रिपब्लिकन्स आल्सो वरी अबाउट द इम्प्लिकेशंस फॉर नवंबर, क्योंकि नवंबर में होने वाला है मिड टर्म इलेक्शन और उस समय लग रहा है कि होगा क्या, शायद पार्टी बिल्कुल भी कुछ ना जीत पाए। वेल, वी गोना फिगर दैट आउट, इट्स जस्ट अबाउट 2 months अवे। देखेंगे कि क्या होगा या बीच में क्या पलट जाएगी सारी बात। बढ़ते हैं आगे विद सम गुड म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज फॉलोड बाय समथिंग फ्रॉम धुरंधर। पूरे शो में धुरंधर का गाना कोई ना चलाओ तो भाई शो तो इनकम्प्लीट रहेगा। सुनते साथ साथ आई विल बी बैक टू से माय गुड बायज इन जस्ट अ लिटिल बिट, स्टे ट्यून्ड।

आज इतनी बातें करी कि मुझे लग रहा है मैं सारी दुनिया बिना एरोप्लेन में बैठे ही आपके साथ घूम आई हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस मोर. सुबह का असली वेकअप. जी बिल्कुल, सुबह का असली वेकअप कॉल मंडे मॉर्निंग्स में. अगर द मॉर्निंग शो ना हो तो कहाँ उठोगे आप लोग, तो सोते ही रह जाओगे. नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से और आपको लिए चलते हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो. जी हाँ, हमारे बाकी के शो बिल्कुल लाइंड अप है. हमारे जॉक्स आर गियर्ड अप टू मेक येट अनदर ब्यूटीफुल वीक आप ही के लिए. तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, स्माइल कीजिए एंड स्टे पॉजिटिव. हम यही कहेंगे कि भाई दुनिया भर में इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं या कुछ हैं भी, तो उन सब के बीच में एक इंसान बहुत ज़्यादा कभी कभी घबरा भी जाता है. कभी कभी ये भी सोचता है कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, दुनिया में आसपास क्या चल रहा है. लेकिन ये सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ इतना याद रखिए कि रेडियो मसी 24/7 पर आपके पास एक ऐसा इंसान ज़रूर बैठा होता है एट ऑल टाइम्स जिससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है. और अगर कोई भी घबराहट है, कोई भी दुख है, कुछ भी है, तो हमारा वो स्पेशल शो विच कम्स ऑन ट्यूसडे इवनिंग्स, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से, उसमें आप लिख सकते हैं अपनी कोई भी परेशानी एंड ऑफ कोर्स एनोनिमसली और हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि भाई इट्स अ टाइम फॉर फेस्टिविटीज. जन्माष्टमी इज अराउंड द कॉर्नर, गणेश चतुर्थी इज अराउंड द कॉर्नर, इतना कुछ हो रहा है. सो स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती 24/7 गाइज, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आपको पूरे पूरे सिंगापुर में क्या चल रहा है उसकी खबरें मिलती रहेंगी. And who knows, you might continue to win a lot as well. So stay tuned, stay smiling, stay healthy, stay safe, and above all, stay blessed. Take good care. Bye for now.

0: पर्चे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh Mehra.
5: Ye raat to apni hai, par ek khayal kiska hai? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
6: मुझे चांद पे ले चलो।
5: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
7: रात

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इन

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, हेलो एंड वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली इतने फेस्टिवल्स आ गए ना बीच में, एंड दिस रक्षाबंधन वाज लाइक वाओ, मजा ही आ गया। और उसके बाद ये जो मंडे आया है, इट्स लाइक आहा, ऑलमोस्ट एंट्री हो चुकी है हमारी दिन में। कॉफी का शायद दूसरा तीसरा कप आपका चल ही रहा होगा, ब्रेकफास्ट का हिसाब किताब तो आई एम श्योर कि डन हो चुका है। एंड धीरे धीरे दिन अपने मिड मॉर्निंग जोन में आ ही रहा है। वहां पे आप भी हैं और मैं भी, और ये हमारा मस्ती हैंग आउट। घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं बाहर हैं, अब बस अपने काम के आसपास कहीं पर हैं। आपको हेलो हाय, मंडे ऑफिशियली शुरू हो गया, इस बात की बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये मंडे इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो क्या है ना, मंडे को लेकर एक बात नोटिस करिए आपने, सुबह सुबह सब मंडे को बहुत ब्लेम करते हैं, एंड जैसे जैसे दिन बीतता है ना, आगे बढ़ता जाता है, मंडे बेचारा बहुत इनोसेंट लगने लगता है। ऐसा लगता है वो भी कितने दिनों के बोझ तले दबा है, और फिर हम और बोझ रख देते हैं उस पे, एक्सपेक्टेशंस का और गुस्से और नाराजगी का। तो चलिए आज इस वीक की शुरुआत करते हैं उफ मंडे वाली एनर्जी से। बिल्कुल नहीं, इस मंडे को जो है हम इस थॉट के साथ काम करेंगे कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो मजेदार होने वाला है हम उस पर फोकस करेंगे, है ना। आज के मंडे को हम अलग तरीके से लेंगे, क्योंकि हर मंडे को उफ वाले अंदाज में हमको बिल्कुल नहीं खत्म करना है। Why? Because आज 31st of August, August का आखिरी दिन है, मतलब कि ये महीना भी ऑलमोस्ट अपना बैग पैक कर रहा है ना, एंड जाने वाला है। भाई गॉड, बहुत जल्दी नहीं बीत रहा है वक्त, एंड सितंबर ये रहा दरवाजे पर। तो जो अगस्त में नहीं हुआ उसके लिए हम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, एंड सितंबर के लिए अननेसेसरी प्रेशर हम नहीं लेंगे। जो आज है उसे एंजॉय करेंगे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अगर आपने पिछले कुछ दिनों में वुडलैंड्स चेक पॉइंट से मलेशिया जाने की कोशिश की है तो ट्रैफिक का हाल तो आप जानते हैं, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। न्यूज में लगातार है 28 को 29 को, माय गॉड देयर वाज हैवी ट्रैफिक, आपको तो पता ही है। 28 को ना वुडलैंड्स पर बहुत हैवी ट्रैफिक डिपार्चर था और सेम चीज हमें 29 को भी देखने को मिली। देयर वर लॉन्ग क्यूज क्रॉसिंग से आगे, अगर आप बुके तक देखें, बुके इस्तेमाल जो एक्सप्रेस वे है, एग्जिट 10A तक पहुंच गई थी लाइन और ICA ने मोटरिस्ट को ना डिलेज के लिए तैयार रहने के लिए कहा भी था। आप ये सोच के निकलो कि आपको लेट होने वाला है, पहले ट्रैफिक कंडीशंस को चेक करना था, ये सब कुछ बता दिया गया था। मलेशिया के मर्डेका का जो एक लॉन्ग वीकेंड था ना, रिपीट, मलेशिया में एक लॉन्ग वीकेंड था और उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस बीच पता है क्या हो रहा है, तुआस चेक पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। एक्चुअली अपडेट काफी पहले भी आया था, आई एम प्रीटी श्योर कई लोगों ने इसको ऐसे अननोटिस छोड़ दिया होगा, पर चूंकि दिन करीब आ चुका है तो मुझे लगा मैं आपको वापस बता देती हूँ। 1 सितंबर से तुआस पर कुछ कार लेन्स जो है वो टेम्पररली क्लोज होने वाली है क्योंकि वहां पे एक बड़े अपग्रेड का काम शुरू हो रहा है। एग्जिस्टिंग मैंड इमिग्रेशन काउंटर्स को धीरे धीरे हटा करके ऑटोमेटेड पैसेंजर्स क्लियरेंस सिस्टम जो है यानी कि APCS उसकी लेन्स तैयार की जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी लाइक लेट 2027 तक चलने की उम्मीद है और डिपार्चर कार जोन्स में क्लोजर जो है वो फेज्ड आप देख सकते हैं, जो मैनर फेज्ड है उसमें आपको बंद ही दिखाई देगा। बट द एंड गोल इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये शुरू हो जाता है ना APCS तो कार में बैठे बैठे पैसेंजर्स को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए अपने व्हीकल से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। QR कोड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इन सब के जरिए जो क्लियरेंस है वो आपको कार के अंदर बैठे बैठे सब मिल जाएगा, समझे आप। तो तुआस पर जो ये ऑटोमेटेड कार लेन्स है ना वो अर्ली 2027 से प्रोग्रेसिवली शुरू होने वाली है। अब आप अगर सोच रहे 2027, हेलो ड्यूड, सितंबर इज हियर अराउंड द कॉर्नर, आप समझ रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद हम नया साल मना रहे होंगे। बाय गॉड क्या हो रहा है, ये घड़ी बहुत तेज घूम रही है या हमें समय का अंदाजा नहीं लग रहा।

एडजस्टमेंट अभी कर लो, थोड़ा पेशेंस, आगे चेक पॉइंट पे कम स्टॉपिंग और स्टेपिंग आउट ज्यादा हो जाएगी, राइट? फिलहाल अगला गाना एंजॉय कर लेते हैं, आई विल राइट। फिलहाल अगला गाना एंजॉय कर लेते हैं, आई विल बी राइट बैक, स्टे कनेक्टेड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra.
0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start the fun.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi my dear musty people, musty hangout पर आप हैं मेरे साथ। This is Radio Musty 24/7 live और ये है musty hangout हमारा प्यारा। अच्छा एक और बात बताऊं, मस्ती हैंगआउट से अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी हमारे iOS पे या प्ले स्टोर पे तो हम नहीं मिलेंगे आपको। नाम बदल गया हमारा, सिर्फ नाम बदला है वो भी प्ले स्टोर या iOS पर। आपका नाम है मस्ती मीडिया नेटवर्क, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप हमें प्ले स्टोर पे या iOS पे ढूंढ रहे हैं iOS ऐप स्टोर पे तो आप हमें मस्ती मीडिया नेटवर्क के नाम से ढूंढिए। जस्ट गेटिंग अपग्रेडेड, सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, ट्रैफिक लेन अपग्रेड हो रही है। तो मैंने कहा मैं बता दूं, याद दिला दूं, वक्त तो काफी हो गया इस बात को हुए, लेकिन कुछ लोग ना भूल जाते हैं, बादाम नहीं खाते रोज, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। अब अगर आप सुहानी शाह होते तो मेरे मन की बात पढ़ लेते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर आप सुहानी शाह तो है नहीं, तो मुझे लगा मेरे मन की बात आपको बता ही दूं। अरे हाँ, सुहानी शाह, यस, मेन बात तो ये है। सिंगापुर में, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दिखता है वो सच होता है तो हैंग ऑन। सिंगापुर में ना एक ऐसा एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि आपका माइंड बॉगल कर देगा। इट्स माइंड बॉगलिंग ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस, नहीं, नॉट ब्लॉगिंग, माइंड बॉगलिंग एक्चुअली। ये आपके दिमाग के साथ खेलेगा। सुहानी शाह एक बहुत ही कमाल का शो लेकर आ रही हैं जिसका नाम है स्पेलबाउंड, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस। एक लाइव शो है जिसमें माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, इम्पॉसिबल एक्सपीरियंस का आप मजा उठाने वाले हैं। ये शो हो रहा है 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर को 2026 शाम 6 बजे क्रेटा आयर पीपल थिएटर में। और हाँ, टिकट्स भी अवेलेबल है सिस्टिक पर, यू नो, SISTIC। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो को लाइव देखें तो आपके पास एक मौका है। आप मुझे बताइए कि सुहानी शाह का स्पेल बाउंड शो किस डेट को होने वाला है। सही जवाब भेजिए 9151893 पर। और अगर आप लकी हुए तो आप इस शो को लाइव देख सकते हैं। कैसे, इसका सही जवाब दीजिए और उसके बाद जादू देखिए। हमारा दिमाग पढ़ने की आप कोशिश मत करिए, हमें पता है। हम आपका दिमाग पढ़ चुके हैं, आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं बताऊंगी। नो, आगे बढ़ते हैं, स्टे कनेक्टेड। कहाँ भेजना है सही जवाब? अरे आपने दिमाग पढ़ लिया। 9151893 पर। कब है सुहानी शाह का ये शो? टेल मी द डेट।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, this is me Mugdha. Once again, welcome back. जिन लोगों ने अभी join किया, आप सुन रहे मस्ती हैंगआउट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अभी कुछ ही दिन पहले हमने बड़े धूमधाम से राखी मनाई, we celebrated रक्षाबंधन and many festivals आसपास अभी थे इधर, है ना, भाई बहन फैमिलीज लोग अपने साथ उनके सलामती की दुआएं मांग रहे थे और ये सब हो रहा था। और ऐसे में नेपाल में जो ये ड्रास्टिक फ्लड आया, उसके बाद जो फोटोग्राफ्स इमर्ज हो रही हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, दे आर डिवास्टेटिंग, दिल भारी कर रही हैं, मन भारी कर रही हैं, डराती हैं कि यू नेवर नो इन अ लाइक क्लिक ऑफ अ मोमेंट कुछ भी हो सकता है ना। कई परिवार अपने लव्ड वंस को ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और इस वक्त शायद सबसे बड़ी मदद पता है क्या है, सही इन्फॉर्मेशन को सही लोगों तक पहुंचाना। एंड मुझे लगता है बीइंग रेडियो पीपल, बीइंग फ्रॉम रेडियो, एंड चूंकि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव फेसबुक, वी हैव लाइव रेडियो, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हमारा जो मस्ती मीडिया का फेसबुक पेज है ना, जी हाँ, हमारा फेसबुक पेज है, आप अरे हाँ मुझे पता है, आपको पता है, बट जिनको नहीं पता मैं उनकी बात बता रही हूँ, मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर के नाम से आपको हमारा पेज मिलेगा फेसबुक पे। तो हमारा जो ये फेसबुक का पेज है उस पे नेपाल से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, सर्च ऑपरेशंस है, कुछ लोगों की डिटेल्स भी हैं जिनकी तलाश सिंगापुर के हैं, जिनकी तलाश चल रही है। और सिंगापुर से भी अगर किसी को किसी मिसिंग पर्सन के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो पेज पे अगर आप हमारे जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें जानने सुनने समझने को मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी कोई एक इन्फॉर्मेशन छोटी बड़ी आपके परिवार तक, आपके अपने लोगों तक आपको वापस पहुंचाने में मदद करेगी। तो एक बार हमारे फेसबुक पेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको नोटिफिकेशन आते होंगे। एक थोरो स्क्रॉल करिएगा और देखिएगा, अपडेट्स पे नजर डालिएगा, और आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आप हमें दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट। तो वहां जाइए फेसबुक पेज पे और आपको किसी के बारे में भी जो हमारे सिंगापुर में किसी को ढूंढ रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज उनकी हेल्प जरूर करिए। सिंगापुर से हमारी छोटी सी सॉलिडारिटी है, नेपाल इस वक्त बहुत मुश्किल में है, एंड वी आर विथ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं शो के अगले आवर में, करेंगे मुलाकात। रिमेम्बर माय वर्ड्स, राइट। आप सुन रहे हैं मुग्धा को ऑन रेडियो मस्ती।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज मंडे को ये है शो का सेकंड आवर एंड इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड में ना कभी कभी एक खबर आती है और दिमाग जो है तुरंत कास्टिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर हमारा बैठ जाता है। सब कुछ हम प्लान कर लेते हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। सोचिए आमिर, सिद्धार्थ एंड टाइगर श्रॉफ एक ही फिल्म में, और अगर फिल्म का नाम रेस हो तो मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। रेस फ्रेंचाइजी का नाम सुनते आपको कौन याद आता है? मुझे एक्टर्स के अलावा बाकी सब याद आता है। गाड़ियां, गाने, म्यूजिक, फाइट सीन्स एंड एक्शन एंड एवरीथिंग, क्योंकि पहली रेस के बाद हमें एक्टिंग देखने को मिली ही नहीं। खैर, तो फिलहाल सुनने में आया है कि भाई रिपोर्ट्स की माने तो रमेश तौरानी इस फ्रेंचाइजी को एक बहुत ही फ्रेश रीबूट के साथ वापस लाने की तैयारी में है। आमिर खान ने स्क्रिप्ट सुनी है, कॉन्सेप्ट उन्हें काफी पसंद आया है और राइटर्स के साथ स्क्रिप्ट पर वो काम भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है स्क्रिप्ट पे काम करना भाई, पिछली रेस हमने देखी थी, बस देखी थी। सिद्धार्थ और टाइगर जो है नरेशन सुन चुके हैं और दोनों की तरफ से अभी तक ये पता है कि रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा ब्रेक लगाइए। दिस कास्ट इज नॉट ऑफिशियली लॉक्ड, प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन अगर ये तीनों साथ आ जाते तो मुझे बस एक बात की चिंता है, रेस में गाड़ी कौन चलाएगा और ऑडियंस का दिल कौन संभालेगा। आई एम श्योर गाड़ी के लिए इस बार ड्राइवर्स होंगे। आमिर की स्ट्रेटेजी है, सिद्धार्थ का स्टाइल एंड चार्म है, एंड टाइगर की एक्शन वाली एनर्जी तो भाई साहब।
2: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
3: मैं चीज बड़ी हूँ मस्त।
1: तो टाइगर तो गाड़ी के ऊपर बैठ के भी गाड़ी चला लेंगे, क्या बड़ी बात है, है ना? रेस का पुराना फॉर्मूला अगर यहाँ पे फिक्स हो जाए विद अमेजिंग म्यूजिक, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को हिट होने से कोई रोक सकता है। क्या कहते हैं आप?

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी किसी इंसान की असली पर्सनालिटी उसकी किसी फेमस फिल्म से नहीं पता लगती, उसके बिहेवियर से पता लगती है। बॉलीवुड की एक पुरानी बात मैं उसका जिक्र करने वाली हूँ। बात साहब कहानी सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये बात डिस्कस करनी चाहिए, और इस बात ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। दो नाम बहुत ही बड़े, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है और एक जो अब भी सबके दिलों पर राज करते हैं। वन इज मुगैम्बो अमरीश पुरी जी एंड द अनदर वन इज रजनीकांत। अब आप सोचिए दोनों एक ही फ्रेम में, एक तरफ वो आवाज मुगैम्बो खुश हुआ और एक तरफ रजनीकांत का टैडा वाला स्टाइल। लेकिन पता है इनकी स्टार्टिंग जो है इतनी स्मूथ नहीं थी। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने अभी हाल में किसी इंटरव्यू में बताया होगा कि एक बार उनके डैड ने, मतलब अमरीश पुरी जी ने, रजनीकांत के साथ काम करने से ही मना कर दिया था। वो चेन्नई से वापस आ गए और प्रोड्यूसर कह रहे थे कि उन्हें रजनीकांत के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। उन्हें लगा कि रजनीकांत सेट पे अपना कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस चला रहे हैं। अब कहानी में पता है यहाँ पे ट्विस्ट आता है। रजनीकांत ने अमरीश पुरी जी से माफी मांगी। यस, रजनीकांत ने अमरीश पुरी जी से माफी मांगी और उसके बाद दोनों ने साथ में एक नहीं दो नहीं पूरी 9 फिल्म्स की, हिंदी एंड तमिल दोनों में। अंधा कानून, गिरफ्तार, थलापति, बाबा, ऐसी फिल्में इस लिस्ट में शामिल है। पता है इंटरेस्टिंग क्या है, आजकल जरा सी डिसएग्रीमेंट पे लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं ना। फिल्में बनने से रुक जाती हैं, धुरंधर से धुरंधर लोग भी जमीन पे आ जाते हैं। लोग मतलब रफ्तार ऐसी पकड़ लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स की बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो लेजेंड्स थे। एक ने कहा आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक नहीं लग रहा। दूसरे ने कहा आई एम सॉरी, ठीक है ये मेरी गलती। और कहा किसने, रजनीकांत ने। आप समझ रहे हैं ना, दोनों का ईगो क्लैश हुआ लेकिन उन्होंने उसको साइड में रखा और फिर काम किया।

मेरे हिसाब से अपॉलोजी मांगना या देना किसी को छोटा बनाता ही नहीं है। माफ करिए, रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे, बचेंगे। अमरीश पुरी और रजनीकांत की कहानी शायद इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सुन रहे आप, I'll be right back, stay tuned.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, गणेश चतुर्थी काफी करीब आ रही है और जिनके घर पे पापा आते हैं ना उनके लिए बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। इस बार पापा को घर आप कौन से रूप में लेकर आने वाले, सोचा नहीं है ना? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट। मैं आपको कंफ्यूजन के बाढ़ में डालने वाले हैं समंदर में। देखो वैसे तो गणपति बप्पा का हर रूप बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, श्रद्धा से और साफ मन से। श्रद्धा मतलब मन की श्रद्धा से और साफ मन से अगर आप किसी भी रूप में बप्पा को घर ला रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स तो उनकी देखो कम नहीं होंगी। लेकिन एक बात है, इस बार बप्पा को ऑनलाइन मत देखो, फोटो देख के मत पसंद करो, जाओ और सिलेक्ट करो। इतनी मेहनत से बनाते हैं लोग, है ना? लेकिन आपको इसके लिए कहां जाना है, एड्रेस नोट करो, ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप, 21 कफ रोड लोकेशन जो है वहां पे जाकर के मूर्तियां मिलेंगी। ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप के 21 कफ रोड लोकेशन पे आप जाएंगे तो आपको गणपति जी मिलेंगे। वैसे तो गणपति जी हर जगह है पर मूर्ति रूप में यहाँ पे मिलेंगे आपको। जाइए अपनी आंखों से देखे, खूबसूरत पगड़ियां हैं, कहीं पे कलरफुल वस्त्र हैं, ज्वेलरी, फाइन डिटेलिंग और हर मूर्ति पे कारीगरों की मेहनत इतनी ब्यूटीफुल है कि आप एक बार उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको कहिएगा कि वाह क्या काम किया। फिर देखिए, और फोटो जस्टिस नहीं करती है। ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट है पर नॉट फॉर दिस ईयर्स गणपति। अगर आपके पास ये फैसिलिटी के आप जाकर देख सकते हैं तो अलग अलग डिजाइन एंड साइजेस में आपको गणपति आइडल्स वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। तो पूरी फैमिली के साथ जाइए एंड सबकी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हुए अपने घर इस बार कारीगरों के हुनर को अप्रिशिएट करके लाइव गणपति देख करके ले आइए। बस इस बार आप हमारे घर चलिए, ऐसे बोलिए पापा को और हमारे घर पे हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। गणपति आइडल्स के लिए आपको कहां जाना है, 21 कफ रोड, याद रखिएगा।

Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. DJ

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ चीजें जो होती है ना कॉलेज खत्म होने के बाद समझ में आती हैं। उस पर लगता है लाइफ कितनी सॉर्टेड है, किसी के साथ दोस्ती है, कहीं क्रश है, वीकेंड पे कहीं जाना है, सब पता होता है। हाय वेलकम बैक, मुझे भी सब पता है क्योंकि मैं आपके जो बताने वाली हूँ ना उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, आपको शायद बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। हाय दिस इज मी मुग्धा, मुझे सुन रहे मस्ती हैंगआउट पर। जिंदगी जो है सॉर्टेड होती है, चल रही होती है, आपको पता है कॉलेज के डेज एंड ऑल दैट, एंड सडनली एक दिन आके आपकी लाइफ आपके कान में कहती है अच्छा चलो अब देखते हैं लाइफ कितनी सॉर्टेड है। एंड आई थिंक इसी कंफ्यूजन को फ्रेंडशिप फर्स्ट लव हार्ट ब्रेक ग्रोइंग अप इस कहानी को लेकर आ रही एक नई फिल्म जिसका नाम है डोंट बी शाई। टीजर अभी हाल ही में सामने आया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई बहुत ही बड़े बॉलीवुड फेसेस के साथ नहीं आ रही है। लीड में आरुषि बजाज, पीयूष खाटी एंड ऐसे बहुत से नाम है जिनको आपने कभी सुना ही नहीं है। फिल्म को श्रुति मुखर्जी ने लिखा है और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। प्रोड्यूस किया है आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट ने। बैनर उनका इंटरनल सनशाइन जो उनका बैनर है उसके तहत। टीजर देखकर वाइब बहुत फेमिलियर लगेगी आपको, दोस्ती प्यार कंफ्यूजन स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी कहानी लगेगी आपको, या हॉलीवुड में आप हाई स्कूल म्यूजिकल ऐसी कोई पिक्चर देखेंगे तो आपको उसकी वाइब आएगी। ये वो एज है जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बताते कम है और दोस्तों के साथ पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं, पूरी कहानी उनको बता देते हैं। और मुझे ना कमिंग ऑफ एज स्टोरीज जो है उनकी यही बात सबसे अच्छी लगती है क्योंकि हम सब जिंदगी में ये ऐसा फेज जरूर महसूस करते हैं जहाँ पे हम सब इस दौर से गुजरते हैं, चाहे हम आगे जाके कितने भी समझदार क्यों ना हो जाए, ये फेज हम सबकी लाइफ में आता ही आता है ना। एक क्रश, एक ब्रेकअप, दोस्त की कोई बेवकूफी, हमें लगता है हमको सब पता है और लाइफ में सिलेबस दोबारा खुल जाता है। सो डोंट बी शाई 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी हिंदी एंड इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ। इंडिया के अलावा दुनिया भर में आप इनको 240 से ज्यादा कंट्रीज में देख सकते हैं और टेरिटरीज में भी अवेलेबल है।

तो अगर आपको ऐसी शॉर्ट स्टोरीज या ऐसी स्टोरीज पसंद है जिनमें कोई बड़े बड़े धमाके नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, इमोशंस के छोटे छोटे गुब्बारे हैं, तो आपके लिए कहानी जरूर है। देखना

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: हाई सिंह कुमार, वेलकम बैक। शो के दौरान द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अच्छा, एक सवाल उन लोगों से कि आपका बिजनेस आप भी जो फिलहाल आपके घर में चल रहा है, या उन लोगों से जो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, कहीं पहुंच रहा है घर से जो चला रहे अपना काम आप। बिकॉज अगर आप घर से खाना बना रहे हैं, फैशन या अपैरल का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट, होम डेकोर, लाइफस्टाइल, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ दोस्तों को या व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे मत दिखाइए। क्यों दिखाना है सिर्फ अपने फॉलोअर्स को? उनको भी दिखाइए, पर औरों को भी दिखाइए। कैसे? पूरे सिंगापुर को दिखाइए, वो मैं बताऊंगी कैसे। माउंट पैटर्न CCIAEC प्रेजेंट्स नारपानी फेस्टिव बाजार 2026, सपोर्टेड बाय पीपल्स एसोसिएशन विद मस्ती मीडिया नेटवर्क एज डिजिटल मीडिया पार्टनर। अब ये जो बाजार है ये शुरू होगा 27th of September को, मतलब ये होगा 27th of September को फ्रॉम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एट माउंट पैटर्न CC मल्टीपर्पज हॉल। ठीक है, अगर बिजनेस ओनर हैं आप या आप अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तरह के टेबल्स हैं आपके पास, एक है स्टैंडर्ड जिसका रेट है $80 पर टेबल एंड दूसरा है $100 पर टेबल, ये प्रीमियम वाला है। GST अलग से आपको देना होगा। तो चाहे आपका बिजनेस नया हो, होम बेस्ड हो या ऑलरेडी आपको एस्टैब्लिश बिजनेस ब्रांड हो, विजिबिलिटी अपनी बढ़ानी है तो कम पुट अप योर स्टॉल एंड मीट योर कस्टमर्स लाइक फेस टू फेस। वही तो असली मजा है, कस्टमर्स आएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस हैं।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाती है कि बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस बार कंफ्यूजन इतना प्यारा है कि हंसी भी आ रही है और दिल भी पिघल रहा है। सोशल मीडिया पर एक नानी का वीडियो है, नानी जी का, बड़ा वायरल हो रहा है, इंडिया से आ रहा है ये। ग्रैंड डॉटर ने क्या किया, उनको उनका फोन दे दिया और बताया कि आशु के लिए एक लड़की मिली है। वो विदेशी है, आशु उसका भाई, लेकिन वो विदेशी है और हिंदी बोल लेती है। नानी बड़ी खुश हो गई और बस कहानी वहां से शुरू हुई और क्यूटी हुई, क्यूटनेस पे ही शुरू हुई। एक्चुअली उन्होंने फोन लिया और वो बात पता है किससे कर रही थी, वो चैट जीपीटी से बात कर रही थी। नानी को नहीं पता कि व्हाट इज चैट जीपीटी, क्या हो रहा है। नानी को बस इतना पता था कि सामने से कोई आवाज आ रही है, वहां पे इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, और ये वो लड़की है जिनसे उनके नाती की, मतलब उस लड़की के भाई की शादी होने वाली है। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो सच में होने वाली बहू से मिलने वाली हो, कैसी हो, ठीक हो, घर परिवार की बातें, और फिर शादी की चिंता शुरू हो गई। मतलब हम लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि आज रात के खाने में क्या बनेगा, और नानी क्या कर रही है, बेटा शादी करोगी ना हमारे बच्चे से। सोचिए चैट जीपीटी ने क्या कहा होगा। अब उनकी जो ग्रैंड डॉटर है ना, उसने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि नानी को सच में लगा कि वो किसी इंसान से बात कर रही है। मिलियंस ऑफ व्यूज तो मिल चुके हैं इस वीडियो को, लोगों ने नानी के इनोसेंस को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ऑनेस्टली मुझे क्या लगा इस वीडियो में सबसे अच्छा, टेक्नोलॉजी को समझना जो है हम उसको समझ रहे हैं, नानी ने टेक्नोलॉजी को बस एक इंसान की तरह अपनाया और बिना ज्यादा सवाल किए सारे सवाल भी कर लिए और जवाब भी मिल गए। इसी को कहते हैं दिल साफ हो तो सामने कौन है उससे ज्यादा जरूरी है कि बात करना अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना।
2: छई चप छई छपा के छई पानी पे छींटे उड़ाती हुई लड़की।
1: यो नानी, सुपर नानी।
3: आई सेड नेम्स आदित्य, यू कैन कॉल मी आदि।
4: आई एम पन्ना।
3: हाय, फील लाइक अ स्पिन? ऊपर चलोगी?
4: कहाँ?
3: मार्स पे चलेंगे।
4: इस प्लेन में?
3: ऑफ कोर्स। डोंट अंडरएस्टिमेट दिस फ्लाई, इट कैन फ्लाई रियली हाई। चलो।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओह माय गॉड, क्यूटनेस ओवरलोडेड है फिलहाल आपके रील्स एंड आपके सोशल मीडिया पर। कुछ रिश्तों के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती है, जरा जरा से ब्लैंकेट्स काफी होते हैं। यस, एक वीडियो है, बड़ा प्यारा है, लोगों का दिल भी बहुत जीत रहा है। वीडियो में क्या है ना, बारिश हो रही है और पूरे रास्ते पे बहुत कीचड़ है, मड मड मड एवरीवे, और दो छोटे छोटे बच्चे उस रास्ते से गुजर रहे हैं। दिस वीडियो इज अगेन फ्रॉम इंडिया, और ये बच्चे जो है रास्ते से गुजर रहे हैं, छोटे से भाई है और उसकी बहन भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, बहुत छोटी नहीं पर छोटी है उससे, और वो भाई भी काफी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, और उसके एक हाथ में एक ब्लैंकेट है, लेकिन वो ब्लैंकेट उसके खुद के लिए नहीं है। बारिश हो रही है, बहन को बारिश से बचाने के लिए उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के उसको पकड़ा हुआ है। भाई साहब खुद अभी बच्चे हैं छोटे से, रास्ता आसान नहीं है, बारिश है, और पूरा ध्यान छोटी बहन पे, और तभी सामने से एक डॉग आ जाता है। डॉग की हाइट भी ऑलमोस्ट बच्चों के बराबर ही है। अब प्रोटेक्टिव भाई है, भाई ड्यूटी उसको पूरी करनी है, वो सीरियस हो जाता है बहुत ज्यादा। बहन को ब्लैंकेट के नीचे रखा है, आसपास देख रहा है कहीं कुत्ता पास में तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हमला ना कर दे, और वीडियो देखने वाले जो है ना वो इस छोटे से भाई की बहुत तारीफ कर रहे हैं। किसी ने कहा कि सबसे प्यारा एग्जाम्पल है सिबलिंग लव का। सच में कहें तो ये बात बिल्कुल सही है। बड़ा भाई होना जो है वो हमेशा ये नहीं होता कि आप बहन के लिए दुनिया जीत कर ले आए, कभी इतना ही बहुत है कि बारिश में खुद भाई तो है वो भीग रहा है और छोटी बहन को भीगने नहीं दिया है ना। यही है वो बचपन की छोटी छोटी बातें जो बड़े होकर हमारे लिए मेमोरीज बन जाती है। अब इस बहन को ये बात याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है।

वैसे बहने इस बात को याद रखें कि आज ब्लैंकेट पकड़ने वाला भाई कल आपकी चीजें चुरा भी रहा होगा। इस वक्त दो राय नहीं है, देखो ये तो नहीं चल सकता, ये तो होना ही था।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, और बस मस्ती हैंग आउट की घड़ी कह रही है अब टाटा बाय बाय का वक्त आ रहा है। मैं हूँ मुग्धा और 3 घंटे पहले हमने शो शुरू किया था, पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कब बीत गए। गाने, बातें, बॉलीवुड की खबरें, सिंगापुर की हलचलन, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, रेडियो सुनते हुए अक्सर आपको लगा होगा कि रेडियो के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके आसपास हो रही हैं, आपको लगता होगा आप वो सब कर सकते हो, है ना? तो जस्ट डोंट सिट एंड थिंक। मस्ती मीडिया एकेडमी में आपको रेडियो जॉकिंग, पॉडकास्टिंग, प्रेजेंटिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, इवेंट होस्टिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन सब की स्किल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, आप सीख सकते हो। लर्निंग के प्रॉपरली हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं 3 लेवल्स में। Level 1 इज बेसिक, Level 2 इज इंटरमीडिएट एंड Level 3 इज एडवांस्ड। हर एक लेवल में आपके लेवल के हिसाब से आपको सीखने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग जो है आपकी एक्टिव ब्रॉडकास्टर्स के साथ होगी। रियल वर्किंग स्टूडियो एक्सपोजर आपको मिल सकता है। कोर्सेज स्कूल या वर्क कमिटमेंट्स के हिसाब से उसको ध्यान में रख के बनाए गए ताकि आपका कोई काम हैम्पर ना हो। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी रेडियो मस्ती वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर एक ईमेल तो देखो आपको करना ही है। आपका एक छोटा सा इंट्रो लिखो और भेज दो info@radiomasti.com.sg पर। और पता है क्या, आप मुझे अगर आप सुन रहे हैं तो क्या पता अगली बार आप इधर हो और मैं आपको सुन रही हूँ। इसी थॉट के साथ सिंगापुर मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, म्यूजिक को थोड़ा लाउड रखिए। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ, आपको कर रही हूँ बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक और मस्ती हैंग आउट के शो में ऑन वेडनेसडे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
2: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा, बैक टू बैक गाने, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Mahapurush.
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: Yo, Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो। पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या तबारे।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live pe. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: और फिसलते फिसलते देखिए सुबह से शाम हो गई। क्या चल रहा है यार, ये कैसा मंडे चल रहा है जहां पर सांस लेने तक के इंसान को फुर्सत नहीं मिल रही है। कैसे हो भाई लोगों, रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, शाम का वक्त हो चुका है, 5 बजकर हो चुके हैं, स्टूडियो क्लॉक में 5 मिनट। मैं अंतरा यहाँ पर आ चुकी हूँ और शुरू हो चुका है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एक काम हो तो बताओ, इतने आज तो शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे जब आपके आंख खुलते ही द सी ऑफ वर्क इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू एंड इट इज जस्ट नॉट फ्रॉम वन साइड व्हिच इज इट इज कमिंग, ओके, इट इज फ्रॉम द अदर साइड आल्सो, जो नॉन स्टॉप जो है आए जा रहा है। और देयर वाज अ पॉइंट आज के दिन में जब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब किस कौन सी चीज को, फिर मेरे को बैठ के किताब खोलनी पड़ी। नाउ सडनली आई रियलाइज दैट यू नो हियर वेयर आई कैन कॉल माई सेल्फ वेरी ओल्ड स्कूल। ओके, यूजुअली क्या होता है कि ये सारे रिमाइंडर्स और ये सब चीजें हम लोग लगा लेते हैं, मैंने भी लगाया है, बट आई फाइनली हैड टू टेक माय यू नो डायरी आउट। फिर मैंने सब एकदम लाइन से लिखना शुरू किया कि नो पहले ये वाला करूंगी, उसके बाद इसके साथ ये वाला करना है, उसके बाद ऐसे करना है, एंड देन जाके थोड़ी सी मेरे यू नो दिमाग में शांति आई कि ओहो चलो शुरू करते हैं। ये जो नाच है मंडे वाला, उसको शुरू किया जाए। सो वेल, शुरू तो हमारा हो ही चुका है एंड नाउ आई हैव फाइनली गॉट अ ब्रीदर। ठीक है, मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर अपनी आइस्ड अमेरिकनो लेकर। जी हाँ, एंड बिल्कुल हम लोग आपसे यही कह रहे हैं कि क्योंकि ये रिक्वेस्ट शो है तो आपने हमें बताना है कि क्या सुनने का मूड है आप। बट उससे पहले ये बताइए कि आपका वीकेंड कैसा गया एंड आपका मंडे आज सुबह से कैसा जा रहा है। सो आप जब तक ये सारी खबरें और अपडेट्स मुझे देते हैं, मैं यहाँ पर अपने गानों का सिलसिला खुद से बिल्कुल शुरू कर देती हूँ। बट उसी के साथ साथ आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिवअवेज, सो यस, अपना ध्यान जरा इधर रखिएगा, मतलब सिर्फ कान है ना, उतने ही ध्यान आपका यहाँ पर लेना चाहूंगी। रेडियो मस्ती 24/7, अरिजीत सिंह, नीति मोहन फ्रॉम द मूवी बॉस कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ। क्या पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। 5 बजकर हो चुके हैं 21 मिनट एंड चलते चलते जो है आइए टैटूज की बात करें। ये पिछले वीकेंड ही मैं जितने लोगों से मिली एंड एवरीबडी काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड कि यार ये तुम्हारा टैटू तो बहुत ही अच्छा है, हमने तुम्हारा जो है सोशल मीडिया पे स्टोरी देखा, दिस एंड दैट। टैटूज आर वेरी वेरी पर्सनल बाय द वे। हर जो भी जिसके जिसके बॉडी पे टैटू होता है उसके लिए वो काफी कुछ मीन करता है। जैसा कि मेरा इस बार जो मैंने नया टैटू करवाया, दैट हैज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई हैड टू पुट अ स्टोरी एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई ईच ऑफ दोज एलिमेंट्स are there, why is the phoenix there, why is the moon crescent there, why is the star there, you know, what does Sabra Shukra Sukoon means and what it, you know, means to me in my life, and you know, ending it with Bapi's little girl and all of those things. So well, ये भी होता है। जैसे मुझे इस तरह के टैटूज पसंद है। कई सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो किसी को किसी के लिए भी जज नहीं करना चाहिए, वो तो है ही है। बट यहाँ पे विराट कोहली की बात कर ले, उन्होंने भी अपने बहुत सारे टैटूज के उसमें एक और एड कर लिया है। सो हिज लेटेस्ट डिजाइन इज अपियरिंग ऑन हिज लेफ्ट अपर आर्म। ये एक सर्कुलर आर्टवर्क है, रिजेंबल्स पानी के वो रिपल्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे, स्प्रेडिंग अक्रॉस वाटर आफ्टर अ सिंगल ड्रॉप हिट्स द सरफेस एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ हिज ऑन गोइंग स्लीव प्रोजेक्ट। सो ये जो वर्क है, हैज रिपोर्ट्स की मानी जाए, हैज टेकन 5 सेशंस सो फार एंड उसको अभी भी वो स्टेज पे है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वो धीरे धीरे कुछ और सेशंस में जाकर उसको कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट डज इट मीन? सो विराट कोहली जो है हैज नॉट पब्लिकली रिवील्ड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपल डिजाइन। सो वेल, उनका जो है हिज ब्रॉडर रीडिजाइन स्लीव जो है हाउएवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रिप्रेजेंटिंग अ बैलेंस एंड फोकस एंड इनर हार्मनी, परसीवरेंस, पर्सनल ग्रोथ। सो विथ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एक mandala and the lotus and the peony and all those things. So we are still waiting for him to talk more about the latest one, but now ye hai ki inko bahut बहुत बड़े बड़े टैटूज जो है, ही लाइक्स टू हैव देम ऑन हिज बॉडी। वन ऑफ माय ब्रदर्स, ही आल्सो इज द सेम, लाइक हाफ ऑफ हिज आर्म इज कवर्ड विद अ टैटू। आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट्स समथिंग आई डोंट प्रेफर, बट देन people who do it and they do it with a lot of passion and sincerity at the same time. Well, फिलहाल के लिए तो मुझे passion और sincerity से यही कहना है कि बताएं क्या गाना सुनना पसंद करेंगे आप। 9158963 के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं, और जब तक आप नहीं बताते तब तक मेरी पसंद के सुन लीजिए। coming up next खुशबू ग्रेवाल के साथ अरिजीत सिंह, a beautiful romantic number on a Monday evening।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 5:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 पर। वक्त हो चला है कि इस घंटे का आपको ट्रैफिक अपडेट दिया जाए। इस वक्त आपको मिलेगा एक एक्सीडेंट ऑन AYE टुवर्ड्स MCE आफ्टर क्लेमेंटी रोड। इसका कंजेशन जो है रहे मिलेगा आपको क्लेमेंटी एवेन्यू 2 तक। अवॉइड करें लेन 1 और 3। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा NKP टनल टुवर्ड्स TPE बिटवीन PIE एंड ECP। और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स इट वाज आफ्टर क्लेमेंटी। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल अनदर वन। भाई हम जो प्लेलिस्ट में चलाते हैं सारे ही गाने सब एक से बढ़कर एक होते हैं, बट उसी के साथ अचानक से मैं एकदम सीरियस गर्ल जैसी लगती हूं। हमारे पास तो सर जी हर टाइप, आप बस हुक्म करिए सब मिल जाएगा। वैसे वाला एकदम मैंने साउंड किया, बट वो कलंक के साउंड ट्रैक से इट्स अ ब्यूटीफुल वन। वैशाली एंड श्रेया घोषाल दोनों की क्या आवाज एंड द वे दे हैव संग दिस गाना। वेल, आपको भी है बताना कि सुनना है आपको कौन सा गाना। इट इज द रिक्वेस्ट शो, मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। गुड इवनिंग।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: भाई सनी पाजी का अलग ही टशन चलता हुआ जा रहा है रेडियो बस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है ऑफकोर्स मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। इट्स मंडे इवनिंग एंड अगस्त का आखिरी दिन, इट्स 31st of August। भाई लोगो अगस्त भी खत्म हो गया, इट्स सितंबर। भाई पहले मैं बोलती थी टाइम का पता नहीं चलता, अब मैं बोल रही हूँ कि महीनों का भी पता नहीं चल रहा, फिर एक टाइम आएगा मैं कहूंगी सालों का भी पता नहीं चल रहा है। बट कमिंग बैक टू सनी पाजी, भाई सनी पाजी की हाल ही में आई बंटवारा 1947, ऑलराइट। एंड अब सनी पाजी उसके बाद जो है अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए ही इज गोइंग टू रिज्यूम हिज शूटिंग अपनी अपकमिंग कॉप थ्रिलर एंटनी के लिए। इसका जो लेटेस्ट शेड्यूल है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है मुंबई के फिल्म सिटी में एंड इट इज फोकस्ड ऑन हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सनी देओल एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द एक्शन सीक्वेंसेस, बट समहाउ आई फील आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू नो हमारे सनी पाजी विल लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग एक कॉप अवतार में। ही इज गॉट दैट पर्सनैलिटी एकदम कॉप टाइप नहीं। सो वेल हमारे सनी पाजी इन दिस मूवी जो है ही इज प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर टेकिंग ऑन अ क्राइम सिंडिकेट ऑफ कोर्स एंड हैज रिपोर्टेड been filming intense car chase ke sequences under the supervision of action director Ravi Verma. So well, October tak apne ye wale portions jo hai pure karne ka aisa kaha ja raha hai, but there's another project waiting for him in his wings. So ek bar Anthony jo hai Sunny Paji ke liye wrap up ho jati hai, he is expected to move on to Ramayana ka part 2 where he plays Hanuman ji in Nitesh Tiwari's ambitious mythological saga, another one to look forward to. So while Hanuman ji ka appearance in Ramayana part 1 is expected to be very brief, his role will kind of reportedly become significantly bigger in the sequel featuring major action and dramatic sequences. काफी एक्शन फिल्ड लाइनअप है ब्रो, नॉट बैड। ये भी देख लेंगे जो आ रहा है, सब देख लेंगे क्योंकि हमारी तो उम्मीद आपको पता है ना, उम्मीद पे हमारी दुनिया कायम है कि आएगा एक वो दिन भी आएगा जब हम कहेंगे कि ये सब कुछ अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। Well, इसी के साथ एक और अच्छी बात बताऊं, कॉन्टेस्ट शुरू करें, बिल्कुल शुरू किया जाए, बस थोड़ा सा इंतजार और एंड देन आई विल टॉक अबाउट द गिव अवेज आई हैव फॉर यू दिस इवनिंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: हाँ, तुम ही डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: ये घंटा होने वाला है खत्म, बट गिविंग यू अ शॉर्ट शॉर्ट टीजर कि भाई अगले घंटे में जब हम एंटर करेंगे गाने के उस पार्ट, जब हम आएंगे तो आपको जीतने का देंगे एक मौका, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ मैजिक। अब आप सोचो, एंड इतना आसान सवाल करना है, सिर्फ जवाब देना है, तो फिर करना उसमें देरी किस बात की। लेट अस रैप अप दिस आवर विद द खाली बली मोड ऑन रेडियो मस्ती 24/7। डोंट गो एनीवेयर।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Oh, my God.

0: जीते तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: Imagine someone just asks you a question, ki just think about, ek aisa insaan jo usko aap control karna chahoge. And that person is asking you, just think about it, don't tell me about it. And ultimately, all of a sudden, itni sari baatein karne ke baad, jab agla banda haath kholta hai, usko kehte hai, apna chit jo tumhare haath mein bahut der se hai, usko kholna zara, and it is the name of the person. This person is thinking about, what are you talking about, Hansra? Let me clarify myself. Good evening, namaste, जी हाँ, अगर आपने हमें 5 बजे से ज्वाइन नहीं किया है तो अब बज चुके हैं 6:06 हो चुके हैं 7 मिनट में अंतराब के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है यहाँ पर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भाई वो हो जाते हैं हम स्पेल बाउंड एवरी सिंगल टाइम एटलीस्ट आई वॉच सुहानी शाह इन एक्शन चाहे उनका उनका ऑडियंस वर्क इज crazy insane like I don't know how she does that but whatever she does it is so cool wo dikhti bhi itni cool si hai right to wo us vibe ke sath jab bhi kuch karti hai and I think over the years magic ka pura jo structure hai wo bhi kitna evolve ho gaya hai and that's what she also believes in she said in one of her interviews jo aapne hamare ad mein bhi suna hoga ki jab koi bhi aaj ki date mein jadoo ka naam le magic ka naam le I want them to think about suhani Shah, the brand list. Amazing, amazing. So R Madhavan ke saath she did that. If you want to watch the video, how she actually did that, you have to go to our social media page. वहाँ पे हमने वो video जो है बिल्कुल post कर रखा है आपने के लिए. So wonderful escapades and epic encounters. Time and again they have brought amazing, amazing events and shows in Singapore. And इस बार they want to do something really, really magical. It's very different, one of its kind. एक ऐसा event जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेल बाउंड सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर शी इज गोइंग टू बी 20th of September संडे का दिन है और 6 बजे से जो है इनका शो है तो एक सिंपल सा सवाल दिला सकता है आपको वो मौका जहां पर आप इस शो की टिकट हमसे जीत पाए सो बहुत ही सिंपल है वेयर इज दिस स्पेल बाउंड सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर हैपनिंग इन सिंगापुर आपके ऑप्शंस है ए एस्प्लेनेड बी क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर या फिर सी सनटेक तो अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा सही जवाब है इट्स नो मैजिक डेफिनेटली यू नो दैट राइट सो वेयर इज द स्पेल बाउंड लाइव सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर हैपनिंग ए एस्प्लेनेड बी क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर या सी सनटेक फटाफट से जवाब भेज दे या तो हमारा जो पोस्ट है वहां पर आप कॉमेंट बिल्कुल कर सकते हैं या फिर हमें 9158963 पर जवाब भेज सकते हैं फटाफट से कर लीजिए अदरवाइज sistic.com पर जाकर जो है बिल्कुल आप अपने टिकट को खुद बुक करा सकते हैं चॉइस आपकी है अगर आपको यहां से चाहिए तो आपको देना पड़ेगा जवाब फिलहाल मैं क्या करूं मैं करूं अमित की जो है चॉइस का गाना यहां पे प्ले करूं क्योंकि आज तो रिक्वेस्ट शो वाला दिन है रॉकस्टार के साउंडट्रैक से अमित आपकी रिक्वेस्ट हर्षदीप कौर की आवाज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गुड इवनिंग

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
0: वेलकम बैक, गुड इवनिंग, रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। ये गाना मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, ये कायदे से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो चल रहा था, इट्स गॉट सच अ ब्यूटीफुल वाइब टू इट। देयर आर टू वर्जंस, एक पापो की आवाज में है, एक हमारे श्रेया घोषाल की आवाज में है, एंड आई थिंक बोथ वर्जंस आर इक्वली ब्यूटीफुल बिकॉज दे आर बोथ फैंटास्टिक सिंगर्स। कमिंग बैक टू भाई सेप्टेम्बर की छुट्टियां एंड ट्रैफिक। सो सिंगापुर से मलेशिया ड्राइव करके जाने का अगर प्लान है सेप्टेम्बर स्कूल हॉलीडेज में, सो वेल इंपॉर्टेंट हेड्स अप आई हैव गॉट फॉर यू। ICA जो है उन्होंने वॉर्न किया है दैट 4th टू 14th ऑफ सेप्टेम्बर वुडलैंड्स एंड थ्रूआस चेक पॉइंट्स पर हैवी ट्रैफिक और काफी लॉन्ग वेटिंग टाइम्स एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द स्कूल हॉलीडे रश। और थ्रूआस से ट्रैवल करने वालों के लिए देयर इज वन मोर अपडेट, 1st सेप्टेम्बर से जो है थ्रूआस चेक पॉइंट के डिपार्चर कार जोन्स में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो रहा है, सो एग्जिस्टिंग कार काउंटर्स को ग्रेजुअली रिप्लेस करके न्यू ऑटोमेटेड पैसेंजर क्लियरेंस सिस्टम्स यानी कि APCS लेन्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस वजह से कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट फेजेस में कुछ कार लेन्स टेम्परेरली जो है वो क्लोज्ड रहेगी। सो वंस रेडी दिस न्यू सिस्टम विल एक्चुअली मेक थिंग्स इजियर। ड्राइवर्स और पैसेंजर्स अपनी कार से बाहर निकले बिना QR कोड एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू इमिग्रेशन क्लियरेंस कंप्लीट कर सकते हैं। And तब तक थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ क्रेजी द ट्रैफिक कैन गेट, एक्चुअली मुझे क्या बताने की जरूरत है, जो रेगुलरली वहां पे ट्रैवल करते हैं तो उनको तो पता ही होगा नेशनल डे वीकेंड पर वेटिंग टाइम वॉज अप टू 3 hours चला गया था विथ मोर देन 2.1 million ट्रेवलर्स क्रॉसिंग द 2 चेक पॉइंट्स। सो वेल मलेशिया रोड ट्रिप अगर प्लान है तो या लीव अर्ली, थोड़ा बहुत ट्रैफिक कंडीशंस चेक कर लो बिफोर यू स्टार्ट, कीप सम बफर टाइम एंड या ये सारा थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके चलेंगे तो आई थिंक थिंग्स वुड बी ओके, है ना? इफ यू नो यू नो। फिलहाल खोलते हैं मस्ती की पाठशाला रेडियो मस्ती 24/7।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट,
2: आइए चलिए फिलहाल जानते हैं कि क्या है ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे का। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा एवाई पर टूवर्ड्स अटवास एट पाइडियर रोड एंट्रेंस। एक एक्सीडेंट की खबर ऑन एवाई टूवर्ड्स अटवास आफ्टर बोनाविस्ता, अवॉइड करें लेन नंबर वन। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टूवर्ड्स चांगी आफ्टर लॉनी रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। 6:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में एंड यहाँ पर हमारी नंदा जी जो है उन्होंने ट्यून इन कर लिया है और भेज दिया है उनकी रिक्वेस्ट फ्रॉम साउंडट्रैक ऑफ वॉर 2, लेट्स डू सम आवन जावर। बट नंदा जी के इस गाने के स्टाइल में यह है मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस, आप भी अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। जस्ट आपको मुझे बता देना पड़ेगा 9151896 3 पर। गुड इवनिंग,
3: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: बच्चों को इन सारी चीजों से कैसे बचाया जाए, दैट्स व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट। कौन सी चीज किससे बचाना है। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराल के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई एआई आजकल कुछ अलग ही लेवल पर चलता हुआ जा रहा है। कब कौन क्या कुछ कर जाए आपको खुद भी एट टाइम्स समझ भी नहीं आता है। चाहे आप कभी भी कितना भी केयरफुल हो जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब अभी जस्ट अभी कुछ ऐसा हुआ एंड आई एम सो बेडाजल्ड दैट हाउ कैन दिस हैपन। मैंने नहीं किया, बट मैंने अगर नहीं किया तो एआई ने अपने आप कैसे कर दिया। बट वेल, व्हाइल दैट थिंग गेट सॉर्टेड आउट, मैं वापस आती हूँ अगली खबर पर, जहां पे पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स जो है and yeah, Singapore is looking at much stronger social media safeguards for under 18s. So Singapore ki government ka concern sirf what teenagers are watching nahi hai, but also how social media platforms are designed to keep them watching. That endless scrolling, doom scrolling jisko kehte hain, autoplay, algorithmic feeds, wo bas ek aur reel jo pata nahi kab wo ek ghanta ban jata hai, and hamare saath bhi hota hai. So one proposal is that for teenage users, autoplay jo hai could be switched off by default. Parents could then choose to turn it back on if they feel their child is ready. So they're also looking at protections against direct messages from strangers, stronger controls around algorithmic feeds, and even a possible daily social media ka time limit to create a natural stopping point for infinite scrolling. Now, before everyone jo hai panics, so Singapore has not decided. But Minister of Digital Development and Information, Joseph Ntuyo, jo hai, unhone kaha that there is no magic number for the ideal daily limit. The idea is less about whether 59 minutes is good and 61 minutes is bad, and more about encouraging hamare young jo youth hai to step away and engage with other parts of life. Here's the big part. Singapore intends to enforce the minimum social media age of 13, while those aged 13 to under 18 would get an age-appropriate and more protected experience. If a platform is unable or unwilling to meet its required safeguards, its minimum access age could potentially be raised to 18. So, dekhte hain, interesting conversations chal rahi hai isi ke around. But yeah, it is a big question aaj ki date mein. How do we make that screen time safer without completely cutting off teenagers from their digital world? सभी यही सोच रहे हैं। well, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये तो बताइए ही बताइए, लेकिन साथ साथ में अपनी रिक्वेस्ट भी जरूर बताएं। जैसे मेरे पास से एक और रिक्वेस्ट आ गई है, मैं ढूंढ के उसको फटाफट से लगाती हूँ। तब तक आप ये गाना सुनकर वापस आइए।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो 6:49 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ यहाँ पर और बात करते हैं मेरे उस एक एक्सपीरियंस की जिसको मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी उसे एक्सपीरियंस करें भाई ये वो समय है जब एक के बाद एक बहुत सारी चीजें और बहुत सारे त्योहार जो है वो आते जाते हैं। हाल फिलहाल में रक्षाबंधन गया, अब बप्पा के आने की तैयारियां चल रही है और उससे भी पहले इनफैक्ट जन्माष्टमी भी पड़ेगा। सो वेल कुछ ऐसा हुआ कि हम बप्पा को लाने के लिए, जैसे कि हम हर साल ही करते हैं राइट, लाने के लिए पहुंच गए 21 कफ रोड पर। सो क्या है, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप जो है वो 1 कैंपल लेन पे, तो आपको है पता ही है, वहां से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है इनका एक वेयर हाउस शोरूम टाइप का इन्होंने बना रखा है 21 कफ रोड पे, वेयर ओनली एंड ओनली गणपति जी के डिफरेंट साइजेस में, लार्ज वराइटी में जो है वहां पर मूर्तियां रखी हुई है। आप सोचिए 6 इंच हो, 10 इंच हो, 8 इंच हो, 242 जिसके ह्यूज गणपति, द फीलिंग वॉज सो सरियल ओवर देयर, इतना डिवाइन सा फील हुआ ना, चारों तरफ अलग अलग स्टाइल्स में, शेप्स में, और क्या कारीगरी है। आई मीन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि कैसे कैसे मैं, मतलब कि एंड इट इज सो ब्यूटिफुल एंड टोटल रिस्पेक्ट गोज टू ऑल दोज अमेजिंग आर्टिस्ट जिन्होंने इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स डाली हुई है। क्या खूबसूरत ज्वेलरी उनकी बना रखी है, कितने खूबसूरत कपड़े उनको पहना रखे हैं, और इतना मतलब ऐसा लगता है हर चीज हर उसमें बप्पा इतने ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि क्या ही बताएं। सो जब हम वो एक्सपीरियंस करके आए, हमें लगा कि हम चाहते हैं कि आप भी वहां पे 21 कफ रोड पर जाएं और वहां जाकर ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करें, एंड नॉट ओनली फॉर जस्ट बिकॉज गणेश चतुर्थी जो है और बप्पा के आने का टाइम हुआ है, जस्ट इन केस घर पे भी, घर के लिए भी जो है अगर आपको बप्पा लाने हैं तो आप जरूर वहां पे जाएं। $36 ऑनवर्ड्स जो है वहां पर, इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, देन देयर इज नो एंड टू इट, ओके। एंड या इट इज लाइक दैट, सो हम कुछ ऐसा कह रहे हैं ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के, ये जो है गणपति अगर आपको अपने घर लेकर आते हो, सो इफ यू गो टू द 21 कफ रोड, वहां पर जाकर आप अपने पसंदीदा बप्पा जो है उनको चूज करते हैं, बप्पा आपको भी चूज करते हैं, आप उनको वहां से लेते हैं, तो आप वहां से लेकर वो जो रिसीट है बस वो मत फेंकिएगा, उसका जो है फोटो लेकर हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि इफ यू डू दैट, इफ यू सेंड दैट टू अस एट 9151896 3, यू आर गोइंग टू स्टैंड द चांस टू विन अ पर्ल नेकलेस। आई एम नॉट किडिंग, यस, you stand a chance to win a pearl necklace. All you have to do is go to 21 Cuff Road, get your pasandida bappa, don't throw away the receipt, just click a picture of it, send it to us 9158963 per, and yes, that is all you gotta do. एंड क्या पता इस बार बप्पा जब घर पे आए तो पर्ल नेकलेस साथ में लेकर आए, है ना, दैट इज गोइंग टू बी ज्योति स्टोर्स वाले गणेश चतुर्थी दिस टाइम अराउंड। सो मैजिकल, सो ब्यूटिफुल, कुछ हो ना हो जाना एक बार जरूर, मेरे कहने पे जाना, है ना, इसी बात पे बप्पा वाला गाना डेफिनेटली बनता है। Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: पहुंच चुके हैं 7 बज के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 पर, मैं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने पर्ल नेकलेस जीतने की बात बताई एंड आई नो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे कान थोड़े से अलर्ट मोड पे चले जाते हैं कि कहां कैसे क्या कैसे मिलने वाला था हमें वो पर्ल नेकलेस। भाई मैं कह रही हूँ कि बप्पा और पर्ल नेकलेस दोनों साथ साथ में बिल्कुल आ सकते हैं। हाउ ऑल यू हैव टू डू इज गो टू ज्योति स्टोर्स एंड पावर शॉप 1 कैंपबेल लेन पे है, वहां से 5 मिनट के वॉक पे है 21 कफ रोड, वहां पर है इनका वेयर हाउस या शोरूम जो भी कह लीजिए, एंड यू हैव टू गो देयर गेट योर बप्पा। So I think Bappa chooses you, yeah, rather than you choosing Bappa. So your Bappa chooses you, and then you just get the Bappa and just uska receipt jo hai jo aap Bappa ko wahan se laye, wo receipt nahi phek ke uska photo click karke hame bhej dena hai. Aur aap jab wo hame bhejenge, then you stand a chance to win this pearl necklace as well. Ab dono saath saath mein aapke ghar mein is jo hai Ganesh Chaturthi agar aaye to baat ban jaye, aha baat ban jaye. Chaliye ye to ho gayi repeat टेलीकास्ट, क्योंकि जिन लोगों का मिस हो गया है तो वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। बट उसी के साथ साथ भाई MS धोनी के फैंस सब हाथ खड़े करो, मतलब आप हाथ खड़े करोगे तो मुझे कौन सा वर्ड दिखाई देने वाला है। सो चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन जो है उन्होंने एड्रेस किया द स्पेक्यूलेशन सराउंडिंग धोनी का फ्यूचर इन IPL, सेइंग दैट फॉर्मर CSK के कप्तान साहब जो हैज नॉट येट टोल्ड द फ्रेंचाइजी दैट ही वोंट प्ले इन IPL 2027। तो बात वहीं पे थोड़ी सी आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ऐसा ही चलता रहता है कि धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, एंड या द फाइनल डिसीजन बेसिकली रिमेन्स विद MS धोनी हिमसेल्फ। विश्वनाथन, मिस्टर विश्वनाथन जो है उन्होंने ये भी कहा दैट CSK वुड बी हैप्पी टू हैव धोनी एसोसिएटेड विद द फ्रेंचाइजी इन एनी कैपेसिटी, वेदर एक प्लेयर के हिसाब से, कोच या मेंटर के हिसाब से, बट द चॉइस विल अल्टीमेटली बी हिज। सो फॉर नाउ चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं still have a reason to hope ki bhai another season of thala aayega ki nahi aayega, bas ummeed hi kar sakte hain, baki to waqt batayega. Wa wa wa wa, isi baat ke sath not very happening shayari, just kuch bhi likh diya aur likh kar aage badh gaye. Nazre milana nazre churana, वाह वाह वाह, अर्ज किया है नजरें मिलाना और नजरें चुराना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। जब ऐसे बोलो तो कितना वैसा अच्छा सा साउंड करता है, लेकिन है गाना गाने के लिरिक्स तो मैंने ऐसे ही बोल दिए। वेलकमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना इटसेल्फ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड इवनिंग।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है। जोश में रहो।
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: 7:19 पर करने वाली हूँ एक बहुत ही काम की बात। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अनुराग के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई जिंदगी में क्या करना है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि वो होती है आपकी चॉइस। अब आपने कुछ सोचा और आपने वो सोच कर अपने ही घर में व्हाट्सएप का अपना छोटा सा एक दुनिया बनाकर वहां पर आपने अपना टैलेंट शोकेस करने का सोचा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? बट हम चाहते हैं कि आप उस टैलेंट को और एक कदम आगे बढ़ाकर ले जाए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड आप में से जितने भी ट्यून इन है, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपना छोटा सा जो है अपना बिजनेस चलाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें, कभी हैंडीक्राफ्ट, कभी क्रोशे, कभी कुछ, बहुत सारा कुछ है। देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन सिंगापुर एंड आई पर्सनली नो अ फ्यू ऑफ देम। ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट इज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल, बिकॉज गेटिंग समथिंग एट दिस प्राइस that is completely insane, wo bhi Singapore mein. So you have got something to sell, don't just attend festive bazaar, sell at the festive bazaar. This is the mauka you should not let go from your hand. Ab वैसे तो festive bazaar jo hai bahut hi kamal ki jo hai ekdam taiyari ho kar rahe hain filhal. Fashion, food, festive goodies, home decor, gifts, handicrafts, lifestyle products, basically this is your chance to put aapka business in front of the community. Mountbatten CCIAEC jo hai wo la rahe hai festive bazaar 2026, 27th of September Sunday ko ye hone wala hai, subah 10 baje se sham ke 6 baje tak Mountbatten CC multipurpose hall par. So stall bookings jo hai wo open hai at this point of time. Ek standard table is just $80, premium table at $100 excluding GST. So जितने भी होम बिजनेसेस हैं एंड छोटे बिजनेसेस हैं, क्रिएटर्स हैं, बेकर्स हैं, मेकर्स हैं, ये मौका जो है कस्टमर बनकर शॉपिंग करने के साथ साथ कस्टमर्स बनाने का भी है। प्लस विद लाइव परफॉर्मेंसेस, किड्स एक्टिविटीज, जॉय राइड्स, लकी ड्रॉज, इट्स गोइंग टू बी वन बजिंग फेस्टिव संडे। सो लिमिटेड स्टॉल्स हैं, इंतजार मत करिए, अपना स्टॉल आज ही रिजर्व कराए 8330-2518 पर। यस वंस अगेन 8330-2518 फेस्टिव बाजार 2026। अपने प्रोडक्ट्स लाइए, ब्रिंग योर ब्रांड एंड ब्रिंग योर बिजनेस टू द क्राउड।
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: इसके साथ साथ अगला गाना जो है हमारी सपना आंटी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा चॉइस है। वो बहुत कंफ्यूज थी कि लता मंगेशकर जी का गाना सुनना है लेकिन इतने सारों में से कोई एक चुनना। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट शी डिड दैट। सपना आंटी, हियर यू गो।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आओ हुजूर तुमको ट्रैफिक अपडेट की ओर ले चले। इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट लेकर आ चुकी हूँ मैं हैवी ट्रैफिक। आपको मिलेगा ऑन E1 MCE बिटवीन लोअर डेल्टा रोड एंड बोना विस्टा। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन SLE टुवर्ड्स CTE एट वुडलैंड्स एवेन्यू 12 एग्जिट एंड मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 12। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। परावत से मतलब थोड़ा टाइम और बाकी है, अगर आपका कोई गाने का रिक्वेस्ट है मुझे यहाँ पे बता दे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्ले, बिकॉज भाई आज तो लिसनर्स चॉइस चलती है यहाँ पर। दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस, स्टे ट्यून्ड।
3: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। ओके, ये जो अगली स्टोरी है वो स्पेशली इंटरेस्टिंग है काफी, बिकॉज इट रेजेस अनदर क्वेश्चन कि जब आप कोई गाना सुनते हो, सो डज इट मैटर टू यू वेदर अ ह्यूमन एक्चुअली सैंग इट और नॉट। सोचा नहीं था ना इसके बारे में, भाई AI का जमाना है, आप कुछ भी सोच सकते हो। सो ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल म्यूजिक चार्ट्स जो है, दे हैव ड्रॉन अ लाइन व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। From now on, a track that is wholly or primarily generated by AI will not be eligible for the कोई भी charts वगैरह जो चलते हैं ना उसमें बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। But and this is important, Australia is not banning the use of AI in music. अगर एक human artist creates and performs the song and AI is simply used as the supporting या फिर production tool, that track can still qualify. तो बेसिकली AI असिस्टेंट हो सकता है बट आर्टिस्ट नहीं बनेगा। एंड वॉट ट्रिगर्ड दिस कॉन्वर्सेशन, इट्स फैसिनेटिंग। ऑस्ट्रेलियन डीजे एंड प्रोड्यूसर जोश फवास का वर्जन ऑफ मडोनास आइकॉनिक लाइक अ प्रेयर जो है गाना, यूज्ड AI जनरेटेड वोकल्स एंड ड्रम्स एंड इट बिकेम अ ह्यूज रेडियो हिट ऑस्ट्रेलिया में एंड स्पेंट वीक्स ऑन द चार्ट्स ब्रिंगिंग द होल क्वेश्चन ऑफ AI जनरेटेड म्यूजिक राइट ऑन टू द मेन स्ट्रीम। अब ये जो नया डेफिनेशन है वो प्रिटी क्लियर है, दैट इफ योर लीड वोकल एंड आपका की इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस जो है या प्राइमरी क्रिएटिव एलिमेंट्स आर AI जनरेटेड, द रिकॉर्डिंग कैन बी considered AI generated and therefore won't qualify. But things like AI से आपने mastering effects डाल दिए या फिर you know छोटे मोटे elements जो है just supporting character में use हुआ है, that can still be okay. Here's what I think. This becomes bigger than just Australia, क्योंकि आजकल AI जो है can help you write, compose, create vocals, produce music, do a lot of other things. So eventually as listeners we are going to have ask ourselves, do we love a song because of the human being behind it or simply because how it makes us feel? सोच के बताइए क्या लगता है आपको। अगर कल एक कंप्लीटली यहां पर AI जनरेटेड गाना आपको रुला दे, आपकी प्लेलिस्ट में रिपीट पे चले, does knowing that no human actually sang it change anything for you? I really want to know what you think about it. 91518963.

हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो। बस यूं ही चलते चलते वो वक्त आ गया है कि हमको चलते चलते निकल जाना पड़ेगा, चलते चलते जिम भी चले जाना पड़ेगा, फिर चलते चलते घर पहुंचकर चंद घंटे सो के चलते चलते वापस स्टूडियो पहुंच जाना पड़ेगा, क्योंकि कल होगी ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग मींस इट इज गोइंग टू बी मस्ती का मंत्रा टाइम विद आंसर रासो विद लॉट्स ऑफ अदर न्यूज एंड अपडेट्स व्हिच यू ओनली गेट एट मस्ती मीडिया 24/7। दैट्स हमारे ऐप का नाम। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है और आप अचानक से यू नो यू हैव बीन वंडरिंग कि अरे मैं इंस्टाग्राम पर ढूंढ रही थी बट रेडियो मस्ती के ना, मस्ती मीडिया 24/7 दैट्स द नेम हमारे ऐप का। तो आप चाहे ऐप स्टोर पे हो या प्ले स्टोर पे हो, आपको इसी नाम से जो है मिल जाएगा। बट उसी के साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है, जैसे कि फेसबुक हो गया दैट इज मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर, देन हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है दैट इज मस्ती मीडिया 24। सो मस्ती मीडिया 24/7 याद रखना एकदम, आप भी टैटू कर लो अपने मेमोरी में फिलहाल के लिए, वरना हम इतनी बार बोलेंगे वो हो ही जाएगा। लाइक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ये ना हो नहीं, अब तो वो मस्ती मीडिया 24/7 हो गया, तो अभी जो है बैकग्राउंड म्यूजिक पे सेट कर दिया है, कल सुबह तक यही चलाते रहना, मस्ती मीडिया 24/7, मस्ती मीडिया 24/7, मस्ती मीडिया 24/7। इसी बात के साथ बाय बाय, गुड नाइट, अंतरा इज साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग।

जब हम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं समर लेजेंड्स वाला लौट आया हूँ एक बार फिर से लेकर लेजेंड्स फिर से। तो हर बार की तरह बॉलीवुड के लाजवाब सितारों में से एक और हंसी सितारा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो कौन है उन्हें पहचाने की कोशिश कीजिएगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। आज हम जिस लेजेंड की बात करने वाले हैं वो है तो सुनार, लेकिन एक प्रहार उन्होंने लोहार जैसा किया था जो आज तक पूरी दुनिया को याद है, और उस प्रहार का नाम है शोले। और उस प्रहार को करने वाले का नाम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार 2 आदमी थे।
0: अपने परफेक्शन के लिए मशहूर रमेश सिप्पी ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, जो आज भी याद की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर फिल्म यूनिक है, चाहे वो सीता और गीता में 2 बहनों की कहानी हो, या फिर शोले, या फिर बाप और बेटे के बीच की कहानी शक्ति हो, हर फिल्म लाजवाब है। तो सिंगापुर रमेश के जीवन और उनके फिल्मों के बारे में आज हम इस शो पर जानेंगे। आप बस उनकी फिल्मों के गानों को एंजॉय कीजिएगा और उनकी कहानी को सुनने के लिए लौट कर आइएगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं समर, लौटूंगा यहीं पर। जा कहां से लौटूंगा, ऐसी बोल दिया।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रमेश सिप्पी स्पेशल शो। जी मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स बिट से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। देखिए रमेश सिप्पी एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब के बेटे हैं, तो फिल्मों का माहौल इन्हें बचपन से मिला। चारों तरफ फिल्मों की बातें, फिल्म के प्रोड्यूसर्स का आना जाना, डायरेक्टर्स का आना जाना, फिल्म स्टार्स की पार्टियों में आना जाना। तो साहब ये पैदा हुए 23 जनवरी 1947 को, और उसके बाद से जब से इनके पिताजी इस बिजनेस में आए वो फिल्मी माहौल में ही पले बढ़े। हालांकि शुरुआत में नहीं, कराची में ये पैदा हुए थे साहब, जो अब पाकिस्तान में, और ये महज 6 साल के थे जब इन्होंने पहली बार फिल्म के सेट पर कदम रखा था। तो 6 साल की उम्र से ये फिल्मों के आसपास और फिल्में इनके आसपास थी, और वो फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके सेट पर इन्होंने कदम रखा था, वो थी सजा। महालक्ष्मी स्टूडियोज में ये फिल्म बन रही थी। रमेश सिप्पी बताते हैं कि वहां जाने के बाद मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स और सेट्स देखे, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बस गईं, और यहीं से मुझे फिल्मों का शौक चढ़ गया। रमेश सिप्पी जब 9 साल के थे तब इन्होंने फिल्म शहंशाह में काम किया था, जो 1953 में आई थी। इसमें ये अचला सचदेव के बेटे बने थे, तो यहाँ से इन्होंने फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मेरे सनम में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, जिसे जीपी सिप्पी यानी इनके फादर ने ही प्रोड्यूस किया था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि रमेश सिप्पी ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम किया है, पर्दे पर वो दिखाई दिए हैं, पर ना लोग यही समझते हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। अच्छा, पढ़ाई में ग्रेजुएशन करने के बाद ये लंदन चले गए साहब पढ़ाई करने के लिए आगे। यहाँ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 6 महीने पढ़ाई की। ये यहाँ इसलिए गए थे ताकि बिजनेस को समझ सकें, बिजनेस कर सकें, बिजनेस की समझ आ जाए इन्हें। और फिर वहां से आने के बाद इन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लिया, और साथ ही फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गए। करीब 7 साल ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, लेकिन फिर इनके पिताजी ने कहा कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर ही रहोगे या कुछ करना भी आगे। तो इन्होंने फिर अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसकी बात इस ब्रेक के बाद करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव। ये कमाल के गाने रमेश सिप्पी साहब की फिल्मों से निकाल कर लाए हैं आपके लिए, तो इन्हें तो सुनिए, एंजॉय भी कीजिए और वापस भी आइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहीं पर।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ, और आज हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी साहब की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जब जीपी सिप्पी साहब ने कहा कि भाई सारी जिंदगी असिस्टी करोगे क्या, फिल्में नहीं बनाओगे क्या, तब इन्होंने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था अंदाज। पहली फिल्म थी रमेश सिप्पी की और ये सुपरहिट हो गई। ये फिल्म कई लोगों के लिए पहली फिल्म थी और उनकी भी ये पहली ही फिल्म हिट हो गई। सलीम जावेद ने ये फिल्म लिखी थी जो इनकी पहली फिल्म थी हिट। इससे पहले ये गुलजार साहब को असिस्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो हालांकि राज साहब के साथ पहली फिल्म कर चुकी थी सपनों का सौदागर, लेकिन ये उनकी पहली मेजर हिट फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे शम्मी कपूर साहब, जिनकी एज अ हीरो ये लास्ट फिल्म थी। फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था, जो बेहद कमाल का था, और गाने लिखे थे हजरत जयपुरी साहब ने।

और ये आखिरी फिल्म थी शंकर जयकिशन की एक साथ, क्योंकि इस फिल्म के बाद जयकिशन साहब की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज है वो ये कि इसमें राजेश खन्ना का 10 मिनट का कैमियो है और इस 10 मिनट में ही इन्होंने धूम मचा दी थी। इस फिल्म में वो देखने लायक है हेमा मालिनी और राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज वो गाना जो कल्ट क्लासिक बन गया, जिंदगी एक

वेल, रमेश सिप्पी के डायरेक्शन की एक गजब की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद तो लगभग हर फिल्म इन्होंने हिट ही दी। तो पहले सुनते हैं ये गाने और मिलते हैं इन गानों के बाद और रमेश सिप्पी साहब की कहानी को आगे बढ़ाएंगे उनकी आगे आने वाली फिल्मों के साथ। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज रमेश सिप्पी साहब की बात हो रही है। तो पहली फिल्म हिट होने के बाद, अंदाज के हिट होने के बाद, रमेश सिप्पी साहब को एक टीम मिल गई जो हमेशा इनके साथ रही, और उस टीम का एक परमानेंट मेंबर एक जोड़ी थी, राइटर सलीम जावेद की जोड़ी। अंदाज के बाद इन्होंने एक स्टोरी और लिखी और रमेश जी के पास पहुंच गए। सिप्पी साहब को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। हीरोइन ढूंढने की इन्हें जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली फिल्म अंदाज में हेमा ने जबरदस्त एक्टिंग करके वो छाप छोड़ी कि रमेश सिप्पी साहब की वो परमानेंट हीरोइन बन गई एक तरह से। तो इन्होंने हेमा को ही लेना अच्छा समझा। इस फिल्म में हेमा का डबल रोल था और फिल्म का नाम था सीता और गीता।
2: ओफो, यू नहीं मानेगी क्या?
1: लेकिन इस फिल्म में दो नए हीरो थे। नहीं, हीरो तो पुराने थे, लेकिन रमेश जी के साथ ये पहली बार काम कर रहे थे, और वो थे धर्मबाजी यानी धर्मेंद्र साहब और संजीव कुमार जी, दोनों ही मजे हुए एक्टर, और नतीजा ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट। संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज एक गाना तो बहुत ही हिट था। अरे रे रे रे, सुनेंगे आप, सुन लीजिए।
3: हवा के साथ साथ,
4: अरे रे रे,
3: घटा के संग संग,
4: संभलना।
3: हवा

हेमा मालिनी का इसमें लीड रोल था, मतलब उन्हीं पर बेस्ड थी पिक्चर, टाइटल भी यही था, सीता और गीता डबल रोल था, इसलिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, जो इनका पहला अवार्ड था। लगातार दो सुपरहिट फिल्में देने के बाद अब जीपी सिप्पी साहब ने कहा कि कोई एक्शन फिल्म बनाओ यार, तो उन्होंने रमेश सिप्पी को सजेस्ट किया कि तुम धर्मेंद्र और हेमा को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाओ। तो इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई, चलिए मैं नाम बता देता हूँ, वैसे आपने गैस किया सही किया है, वो फिल्म थी शोले। लेकिन इसका आइडिया कैसे आया और बाकी स्टार कास्ट कैसे इन्होंने सिलेक्ट की, इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए शोले की कहानी, मतलब शोले की कहानी शुरू होने वाली है इस ब्रेक के बाद। रमेश सिप्पी हैं आज के हमारे लेजेंड, में हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती, और मैं समर हूं आपके साथ। लेजेंड्स फिर से हमारे शो का नाम है और आज हम बात कर रहे हैं रमेश सिप्पी साहब की। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि दो लगातार हिट फिल्म देने के बाद रमेश सिप्पी साहब ने एक एक्शन फिल्म बनाने की सोची। पिताजी ने सजेस्ट किया था जीपी सिप्पी साहब ने, तो इसके लिए रमेश जी की बात हुई सलीम जावेद से। तो हुआ यूं कि उस समय डाकुओं का बोलबाला बहुत ज्यादा था इंडिया में, तो इस पर सलीम जावेद ऑलरेडी एक स्टोरी लिख रहे थे। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक आर्मी ऑफिसर के परिवार को एक डाकू मार देता है और फिर वो उसका बदला लेता है। तो ये स्टोरी रमेश जी को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस किए, यानी आर्मी को पुलिस कर दिया और ऑफिसर का बदला लेने के लिए दो जवानों की एंट्री भी करवा दी। वेल, सीता और गीता में से हेमा, संजीव कुमार और धर्मेंद्र तो थे कास्टिंग में, लेकिन गब्बर और जय के लिए फिर तलाश शुरू हो गई साहब। गब्बर के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा को कास्ट किया गया, लेकिन उनके पास डेट्स की कमी थी और रमेश सिप्पी अपनी डेट्स पर ही फिल्म को शुरू करना चाहते थे, तो इस वजह से गब्बर की तलाश अब भी जारी थी क्योंकि डैनी ने मना कर दिया था और डैनी की डेट्स पर रमेश सिप्पी फिल्म शूट करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जल्दी इसे शुरू करना चाहते थे। तो इसके बाद जब गब्बर सिंह के लिए वो ढूंढ रहे थे किसी बढ़िया से कलाकार को, तब सलीम खान ने जावेद अख्तर से कहा कि याद है तुमने मुझसे एक लड़के का जिक्र किया था कि अमजद नाम का एक लड़का है जो अच्छा थिएटर करता है, कदकाठी भी अच्छी है। दरअसल दो साल पहले जावेद अख्तर ने ऐसे ही अमजद का जिक्र सलीम से किया था। तो फिर इसके बाद अमजद खान को बुलाया गया साहब और उनसे बोला गया कि आपकी दाढ़ी अच्छे से बढ़ जाए तब आइएगा कुछ दिनों के बाद। तो साहब फिर कुछ दिनों के बाद अमजद खान आए और फिर उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और वो फाइनल कर लिए गए गब्बर के रोल के लिए, लेकिन अभी भी जय का रोल बाकी था। तो इसके लिए सलीम जावेद ने पहले ही अमिताभ बच्चन को सेट कर रखा था क्योंकि इससे पहले दोनों ने जंजीर में साथ साथ काम किया था अमिताभ बच्चन साहब के। तो जब जंजीर के बाद शोले वो लिख रहे थे तो जय के कैरेक्टर के लिए इनके दिमाग में अमिताभ थे, तो फिर जब ये बात रमेश जी को बताई गई तो उन्हें भी अच्छी लगी ये कास्ट। तो इस तरह से शोले की कास्ट पूरी हो गई। और भी बहुत सारी बातें हैं शोले से जुड़ी हुई, कुछ आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रमेश सिप्पी स्पेशल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से मैं।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Don't stop the music, Rebo, sing it!
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट आउट
6: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ

0: वेलकम बैक सिंगापुर, रमेश सिप्पी स्पेशल शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से और मैं समर हूं आपके साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं दोनों भाई मिलाकर। शोले की हम बात कर रहे थे, मैंने शुरू में कहा था कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो जो लोहार वाला प्रहार था वो यही था। फिल्म को बनने में 3 साल लगे थे और इस फिल्म में पहली बार 75 mm के प्रिंट्स यूज किए गए थे। फॉरेन से स्टंट डायरेक्टर बुलाए गए थे। फिल्म जब शूट हुई तो बहुत सारे किस्से हुए साहब, उनमें से कुछ किस्से याद आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी लेकिन इस दिन एक भी सीन शूट नहीं हो सका क्योंकि भयंकर बारिश आ रही थी साहब। इस दिन को याद करते हुए रमेश सिप्पी कहते हैं कि शायद बापू यानी महात्मा गांधी नहीं चाहते होंगे कि इस दिन तुम्हारी ये वायलेंट स्टोरी शुरू हो। सिंगापुर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है इसलिए रमेश जी ने ये कहा, हालांकि मजाक में कहा था। इसके बाद दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को फिर शूटिंग शुरू हुई और पहला सीन पता है कौन सा था? वो था जब ठाकुर साहब की तिजोरी में चोरी करते हुए जया बच्चन इन्हें देख लेती है और इन्हें चाबी दे देती है। फिर सुबह अमिताभ बच्चन चाबी वापस करने आते हैं और बोलते हैं आगे से ऐसी कोई गलती वो नहीं करेंगे। ये वाला सीन पहला सीन था। कुछ और भी सीन है
1: उर्मा भाई?
2: हाँ भाई,
1: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
2: 1000 रुपए?
1: हाँ हाँ 1000 रुपए।
2: अच्छा हाँ 1000 रुपए, अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
0: तो वेल अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में सुनिए ये गाने रमेश सिप्पी जी की फिल्मों से। मैं लौट कर आऊंगा, समर है मेरा नाम, ये मत भूल जाएगा। ये शो है लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं। कीप लिसनिंग।

0: लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं समर आपके साथ लेजेंड्स फिर से के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां पर आज रमेश सिप्पी साहब की मैं बात कर रहा हूं। सिंगापुर रमेश सिप्पी अपने परफेक्शन के लिए तो जाने जाते ही है। इसके बारे में एक किस्सा है उनके परफेक्शन का। फिल्म का एक सीन है जब गब्बर, ये मैं शोले फिल्म की बात कर रहा हूं, जब गब्बर ठाकुर के पूरे परिवार को मार देता है और जब ठाकुर घर आते हैं लौटकर तो परिवार के सभी लोगों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है ढकी हुई। दरअसल रमेश जी इस दिन कोई दूसरा सीन शूट करना चाहते थे, लेकिन इस दिन भी बारिश आने की संभावना थी, इसलिए बादलों की वजह से थोड़ा अंधेरा था। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि क्यों ना यहाँ वो वाला सीन शूट किया जाए जब ठाकुर घर आता है और जब उसे सब मरे हुए मिलते हैं घर परिवार के लोग, तब ये सीन शूट किया गया। और जब ठाकुर घर आता है तो हवाएं चलने लगती हैं, आपको अगर मौका मिले तो देखिएगा। और जब सबकी डेड बॉडी से कपड़ा उड़ता है तो ये उड़ने वाला सीन 22 टेक में पूरा हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का परफेक्शन है रमेश सिप्पी का। इसके अलावा शोले पहली मूवी है आज तक जिसने डायलॉग्स के रिकॉर्ड निकाले।
1: फ्रैंकली उस फिल्म में सुने जाने का बड़ा महत्व है। आज तक उसकी सारी लाइनें हर सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं।
2: ये तो है, डायलॉग का रिकॉर्ड भी निकला पहली बार, हाँ, और शायद आखिरी बार भी।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: और लोग एक तरह से मेस्मराइज हो जाते थे। क्या होता था, डायलॉग रिकॉर्ड निकला, एक तो फैसिनेट हो गई कि फिल्म के डायलॉग पिक्चर के बिना, तो वो एक फैसिनेशन हुई। लेकिन सुने, डायलॉग सुने,
1: उसके डायलॉग लेकर इमॉर्टल भी हो गया ना, बिल्कुल।
2: हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कैसे ये हुआ। हाँ, तो डायलॉग सुने कि ये पिक्चर तो जाके फिर देखनी पड़ेगी। हाँ, अंदर जाते थे फिल्म देखते थे, बाहर आते थे तो फिर डायलॉग सुनते।
0: इस फिल्म का एक एक डायलॉग कितना बड़ा हिट हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म मानी गई है शोले।
3: वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों।
0: और न सिर्फ डायलॉग्स बल्कि म्यूजिक भी कमाल का था, आर डी बर्मन का और बोल थे आनंद बख्शी साहब के।

इसके अलावा ये दोस्ती तो फिर एक और दोस्ती का कल्ट सॉन्ग बन गया, दोस्ती के लिए नहीं हर फ्रेंडशिप डे पर ये तो बजता ही है। तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे सिंगापुर। इसलिए सुनते रहेगा आप लेजेंड्स फिर से समर के साथ लौटता हूं गानों के बाद।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ समर लेजेंड्स। फिर से एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम रमेश सिप्पी साहब की बात कर रहे हैं। रमेश सिप्पी साहब की सबसे कामयाब फिल्म थी शोले, और अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन गब्बर इनमें से सबसे ज्यादा फेमस हुआ। दरअसल उस वक्त मध्य प्रदेश में गब्बर उर्फ गबरा नाम का एक डाकू बहुत फेमस था, या इनफेमस था, कुछ भी कह सकते, मतलब बहुत ज्यादा कुख्यात था। सब इनफेमस इज द राइट वर्ड। और किसी पुलिस की सर्चिंग लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। तो इसे किसी तांत्रिक ने कहा था कि तुम 121 लोगों की नाक काट कर देवी माँ को भोग लगाओगे, चढ़ा दोगे, तो तुम कभी भी किसी और की गोली से नहीं मरोगे। तो इस चक्कर में इस डाकू ने कई पुलिस वालों की भी नाक काट दी थी। तो इस डाकू से फिल्म के राइटर सलीम खान परिचित थे, क्योंकि इनके पिता पुलिस में ऑफिसर थे और वो बड़े बड़े डाकुओं से मिल भी चुके थे। तो ये गब्बर का कैरेक्टर सलीम खान ने उसी गबरा से उठाया था। हालांकि कुछ स्टोरी फिर अपनी तरफ से उन्होंने लिखी। इसके बाद सूरमा भोपाली भी भोपाल में एक असली कैरेक्टर था, उसी पर जगदीप साहब को सूरमा भोपाली बनाया गया।
1: सूरमा भोपाली, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो।
2: अरे मियां, कम नहीं करूंगा तो क्या बढ़ाऊंगा। लो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे।
1: ये लो 2 रुपए का नोट है।
2: हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा साहब, तो खुदा
1: पैसे तो वापस कर दो।
2: पीए थे मांग रहे हो?
1: वो नोट तो 2 रुपए का था।
2: अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है।
1: 2 रुपए में इसी से लकड़ी?
2: और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवान की डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे?
0: तो कहानी का मतलब यह है कि और भी बहुत सारी बातें हैं शोले से जुड़ी हुई, लेकिन रमेश जी की और भी कई फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। तो शोले के 5 साल बाद रमेश सिप्पी साहब ने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज टाइप की एक फिल्म बनाई। काफी महंगी थी फिल्म, और इस फिल्म में एक स्पेशल कैरेक्टर था जो बहुत फेमस हुआ। रमेश सिप्पी की फिल्मों के विलेन बड़े फेमस होते हैं, पहले गब्बर और फिर इस फिल्म का शाकाल। मैं फिल्म शान की बात कर रहा हूँ।
3: अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है।
0: सिंगापुर, अभी शान की बात शुरू ही की है तो शान से एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिर से फिल्म शान की। स्टे कनेक्टेड।

मुरैया मारे गिल घुमुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सीरा कूड़े मुरैया मारे गिल घुमुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सीरा कूड़े।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मस्ती। और मैं हूं समर आपके साथ लेजेंड्स। फिर से शो में बॉलीवुड के सितारों की कहानी आप तक पहुंचाता हूं। तो आज हम रमेश सिप्पी साहब की बात करें। अभी जिस फिल्म का हम जिक्र करने वाले हैं वो है शाम।

0: एक बार फिर अमिताभ बच्चन, लेकिन इस बार कुछ लोग नए दस्ते में। हालांकि राइटर वही थे, सलीम जावेद। सलीम जावेद इकलौती राइटर जोड़ी थी जो पूरी स्टोरी लिख कर देते थे विद डायलॉग।
1: क्या बात है, लाजवाब है, चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही है। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूँ बबुआ।
0: इस बार शशि कपूर थे परवीन बाबी, जॉनी वॉकर और शाकाल के रोल के लिए कुलभूषण खरबंदा। फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं रही उस वक्त के हिसाब से, लेकिन आज देखिए तो फिल्म बहुत बहुत बड़ी हिट मानी गई है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की रही, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इसे मिला। और गाने तो कमाल थे भाई साहब, फिर वो चाहे यम्मा यम्मा हो या फिर जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, हर गाना हिट था साहब। इसके बाद फिर से इन्होंने बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई, और वो थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब। और वो फिल्म थी शक्ति, कमाल की फिल्म। पहली बार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग में कमी नहीं रखी। वैसे शुरू में यही लग रहा था कि दिलीप साहब हैं तो ये फिल्म दिलीप साहब की होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी कमाल का काम किया इस फिल्म में। दिलीप कुमार जो एक पुलिस ऑफिसर हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं, एक बार अमिताभ की जान की परवाह नहीं करते, और ये बात इनके बेटे अमिताभ को चुभ जाती। तो ये इमोशनल स्टोरी दिखाई है जिसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग दोनों ने बोले। सुनेंगे आप, ये सुनिए।
2: आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
3: इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता।
2: तो पुलिस स्टेशन बुला लेते, वो तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है।
3: देखो विजय, जो भी हो अब भी तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो जो देखो अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
2: जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं?
0: कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार के बाद डायलॉग अगर कोई बोलता है, मतलब इतनी इफेक्टिव डिलीवरी डायलॉग्स की कोई करता है, तो वो अमिताभ बच्चन साहब है। और अगर दोनों ही एक फिल्म में हो तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिल्म में एक गाना भी बड़ा हिट हुआ था, वो जाने कैसे कब कहां। और एक और था जो मुझे बड़ा पसंद है, हमने सनम को खत लिखा। तो सिंगापुर बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आज की आखिरी मुलाकात रमेश सिप्पी की फिल्मों के साथ। स्टे कनेक्टेड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे. चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल. आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर. मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस.
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.

रेडियो मस्ती सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। ये आपने ट्यून इन किया है और जहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, मेरा नाम है समर लेजेंड्स, फिर से मेरे शो का नाम, जहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी साहब की। रमेश सिप्पी साहब ने फिल्मों में तो कमाल धमाल किया ही, साथ ही उन्होंने टीवी पर भी जब कदम रखा तो भाई साहब वहां पर भी हंगामा मचा दिया। एक सीरियल बनाया उन्होंने जिसका नाम था बुनियाद। ये सीरियल बहुत हिट हुआ और इस सीरियल की एक्ट्रेस किरण जुनेजा से फिर इन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि ये रमेश सिप्पी साहब की दूसरी शादी है। वेल, इनकी निजी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है और रमेश सिप्पी साहब के दो बेटे भी हैं। हालांकि अब रमेश सिप्पी ने फिल्में बनाना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ फिल्में जरूर प्रोड्यूस की इन्होंने, जिनमें से कुछ हिट रही और कुछ चल नहीं सकी, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा में बड़े अदब से, बड़ी शान से लिया जाता है। जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो आज भी याद हैं और हमेशा याद की जाती रहेंगी। वेल, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है सिंगापुर, तो अभी इस शो को मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें आकर हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बताएं। और ये भी चाहता हूँ कि आप कुछ वादे करते जाएं, आप कहें कि आप रखेंगे अपना ख्याल, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अपने ख्याल के साथ साथ अपने अपनों का, अपने आसपास के लोगों का, चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, मिलूंगा भी यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जट यमला पगला दीवाना हो।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Now listen.
2: Get up.
1: That's right.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: यास्क मुनि ने कहा है कि मंत्र के अर्थ से मंत्र की ध्वनि अधिक प्रभावकारी होती है। ध्वनि में भी यदि मंत्र का मूल बीज मंत्र हो तो उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। जिस मंत्र में बीज और शब्द दोनों का यथाविधि प्रयोग किया गया है, अतः समस्त ऋद्धि सिद्धि, धन संपदा, संतति प्राप्त करने के उपायों में इस मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan. और बताइए, देखते ही देखते फर्स्ट ऑफ सितंबर भी यहाँ पर हो गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा के साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है। यस, सुबह सुबह अंतरा की आवाज, विच मीन्स इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग एंड ये है मस्ती का मंत्रा। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स टुडे, कैन समबडी प्लीज टेल मी कि भाई टाइम को इतनी जल्दी किस बात की है? बिकॉज हेलो, इट्स ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर। आई जेन्युइनली फील, मतलब कभी कभी मैं ऐसे ही रैंडमली बैठ के सोच रही हूँ कि 2026 को अभी तो वेलकम किया था, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे, कुछ फॉलो किए, कुछ को जनवरी में ही रिस्पेक्टफुली गुड बाय बोल दिया एंड सडनली here we are, month of September. We are already well into the second half of the year. And I think sometimes the speed of time is actually a nice little reminder. Because while hum log itne sara busy rehte hain thinking ki are yaar, kitni jaldi nikal raha hai saal, maybe we should also stop for a second and realize how much life has already happened is saal mein. Some things exactly went jaisa ki plan kiya tha, some plans changed completely. Kuch acche surprises mile honge, kuch difficulties bhi aaye honge, and there are probably a few things still sitting on the 2026 ka list and saying hello, हमारा नंबर आएगा, जरूर आएगा। But that's the nice thing about एक नया महीना जब आता है, you don't need a new year to begin again. September can be a fresh page, isn't it? So no pressure to completely transform आपकी जिंदगी, बस एक छोटी सी चीज पिक करो that you want to do a little better इस महीने में। Maybe अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रख लो। Call someone you have been meaning to call for a very good long time. Start something you have been kind of postponing. Yes, simply enjoy your days a little more instead of constantly racing through them. But yes, वक्त उड़ता हुआ definitely बिल्कुल जा रहा है। फिलहाल जब हम इस सफर में उड़ते हुए जाते हैं, we always do it musically. So let me play some really, really beautiful songs. Good morning, Salwa. There are people who kind of Yeah, wake up with me. हम लोग म्यूजिकल ब्रेक के उस पार मिलते हैं एंड या हमारी बातों का सिलसिला बिल्कुल हो चुका है यहाँ पर शुरू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin.

0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
1: सात बजकर हो चुके हैं 19 मिनट। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ। इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। यू नो, कुछ मॉर्निंग्स पर देर आर स्टोरीज दैट आर काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू सिंपली मूव पास्ट। एंड ओवर द लास्ट फ्यू डेज जिस तरह की इमेजेस एंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं नेपाल से आफ्टर द डिवेस्टेटिंग फ्लड्स दैट हैव, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। I mean, I cannot describe it in words. So many families जिन्होंने अपने loved ones को खोया, अपना घर खो दिया, livelihoods जो है वो खो दिए, and even as we speak, search and rescue operations are still underway with thousands of people still unaccounted for. So before anything else today, I think our thoughts and prayers are with every family affected by this tragedy, and especially with those who are still waiting for the news ki जो उनके लव्ड वन से उनकी कोई खबर तो मिल जाए। दिल से दुआ है जितने भी लोग अभी भी कहीं पर फंसे हुए हैं उन तक जो भी मदद हो, जैसे भी हो, जल्द पहुंच सके। बट यू नो, समटाइम्स इवन इन द मिडल ऑफ एन अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी यू कम अक्रॉस अ स्टोरी दैट रिमाइंड्स यू जस्ट हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग कैन बी। Let me tell you, and this one comes from Tribhuvan Trishuli Secondary School, जो कि नेपाल में अब कह सकते हैं था, because the building is no more there. उनके principal राजेंद्र दवारी जो जी हैं, he was at the school जब warnings आनी शुरू हो गई थी वहाँ पे floods की, कि flood waters are rushing towards their area. Now imagine that moment, hundreds of children जो आपके school में हैं, you don't know exactly how bad it is going to get. You barely have any time कि आप decide कर पाओ क्या करना है. But principal साहब यानी कि राजेंद्र दवारी साहब ने decide किया, we are not taking a chance. तुरंत इन्होंने school bell जो है वो ring की, stopped the classes, immediately started evacuating the students and staff towards higher ground. जितने भी बस में थे, जितने भी buses already on the road थे, सबको inform किया, सारे drivers को कहा और बोला कि बिल्कुल uphill चले जाए. There were about 900 students on campus that morning, and he also contacted, as I told you, the school buses. And within minutes of that evacuation, the flood waters swept away the school. एक सेकेंड के लिए आप सोचे, अ डिसीजन मेड अ फ्यू मिनट्स लेटर कुड हैव चेंज हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज फॉरएवर। एंड मे बी दैट्स व्हाई ये जो स्टोरी है इट काइंड ऑफ स्टेड विद मी, बिकॉज वी ग्रो अप इमेजिनिंग कि सुपर हीरोज जो है एज पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है उनके पास, बट समटाइम्स सुपर हीरोज दे डोंट वेयर केप, समटाइम्स दे आर teachers, sometimes they are school principals, and sometimes they simply ring a bell at exactly the right time. Rajendra Davadi, you may call it responsibility, you may say that, you know, he did what he had to, but for hundreds of children and their families, he is definitely a superhero. Humanity ke heroes hamare beech hi hote hain, kabhi kabhi bas mushkil waqt unki pehchan kara deta hai, hai na? And इसी बात को सोचते हुए I have the perfect song in my mind. I know it's a retro गाना, but somehow जैसे ही मैं ये बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि ये गाना काफी फिट होता है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: इट्स टाइम फॉर इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। आइए आपको बताया जाए कि सिंगापुर की सड़कों का इस घंटे हालचाल क्या हो रखा है। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स अटवास बिटवीन नॉर्मिंटन पार्क एंड थलॉक नंगा रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन BKE टुवर्ड्स PIE बिटवीन PIE चांगी एंड KJE। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन TPE टुवर्ड्स PIE between Loyang Avenue and Halos Link. Yeah, that's going to be a traffic update. Coming up next is Animal ke soundtrack se, a very beautiful one. It says, Hua main. But kya hua? I think wo to gaana sun kar hi pata chalega. Good morning.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: सोचिए 2013 में एक रिलीज हुई मूवी, बट स्टिल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. ऐसी कौन सी मूवी है? ऐसी एक्चुअली कई सारी मूवीज है. रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतराब के साथ. 7:39 हो चुके हैं, नहीं बात करते करते 7:40 हो चुके हैं. स्टूडियो क्लॉक में मस्ती का मंत्रा चल रहा है. भाई काफी साल हो गए, हंड्रेड ऑफ न्यू फिल्म हैव कम, बट समवेयर 2026 में द अकेडमी जो है डिसाइड्स टू रिविजिट वन ऑफ द पर्टिक्युलर जो है बॉलीवुड का कैरेक्टर. कौन? ये जवानी है दीवानी से नैना. जी हाँ, नैना तलवार बनी और नैना. एंड सडनली इंटरनेट गोल्स या लाइक हाँ ऑफ कोर्स नैना ही, तो उसी की तो बात करेंगे. द एकेडमी जो है रिसेंटली शेयर्ड एक आइकॉनिक सीन फीचरिंग दीपिका पादुकोण एज नैना, एंड आई थिंक दिस समथिंग रियली लवली अबाउट द फैक्ट आफ्टर ऑल दीज इयर्स ये जो कैरेक्टर है स्टिल कनेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज नैना वॉज नेवर द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम, राइट? बड़ी चुपचाप सी, स्लाइटली ऑकवर्ड, एक स्टूडियस सी लड़की, समवन हु परहैप्स स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग लाइफ हैपन देन एक्चुअली जंपिंग इन टू इट. एंड देन जो है केम दैट ट्रिप जिसमें फ्रेंडशिप होती है, बनी उसकी जिंदगी में आता है, एंड समवेयर अलोंग द वे नैना स्टार्टेड डिस्कवरिंग हरसेल्फ. बट हियर्स व्हाट आई ऑलवेज लाइक्ड अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन. सडनली वो कोई और इंसान नहीं बन गई, उसने ऑफकोर्स चश्मा उतारा. यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बॉलीवुड, तो मतलब ये तो चलता ही है. थोड़ा डांस किया, थोड़ा नहीं काफी सारा डांस किया, थोड़ा सा प्यार हुआ, बॉलीवुड में तो इतना बनता ही है. बट अंडरनीथ ऑल ऑफ दैट शी वाज स्टिल नैना. शी सिंपली बिकेम मोर कंफर्टेबल विद हु शी वाज, एंड इसीलिए एवरीबॉडी लव्ड हर कैरेक्टर. सो वेल, ये तो हुआ, तो एकेडमी जो है उन्होंने ये चीज रिवाइव की, एंड हमें भी लगा कि यार थैंक यू फॉर bringing Nana back into our timelines, because more than a decade later perhaps ki you don't have to become a new person, right? ye academy mein na ekdam beech beech mein aise surprises dete rehte hain, fir hame lagta hai, and you know ye jawani hai diwani is on that one of my list ki ye movie aap kabhi bhi kitni bhi baar dekh sakte ho. Yeah, and I loved Ranbir Kapoor also in this way. main raftaar chahta hu rehna zindagi se raftaar chahta hu. बॉलीवुड के बात करते ही एकदम ऐसी एनर्जी आती है ना मेरे अंदर, मैं क्या ही बताऊं. गुड मॉर्निंग.